सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 8 जुलाई 2026 बुधवार, अषाढ़ कृष्ण पक्ष अष्टमी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:28 पर।

शब्द ज्ञान की सहायता से विकास के शिखर पर तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन परम लक्ष्य परमानंद को तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पाया जा सकता है।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर प्रोग्राम सरगम में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। आज हम लेकर आए हैं एक अनोखा सफर फिल्मों की दुनिया से। ये है संगीत का सफर जो आपके दिल को छू जाएगा, वो हसीन लम्हे जो हमेशा याद रहेंगे। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हम लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया गीत। संगीत खयाम का है, बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और फिल्म का नाम है त्रिशूल।

पल सुंदर है, कल क्या हो किसको ये खबर है, लंबा सफर।

अभी आप सब सुन रहे थे फिल्म सिलसिला का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया था शिव हरि ने और बोल लिखे थे हसन कमल ने। लीजिए अब सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है सच्चाई और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

प्रोग्राम का अगला नगमा आप सबकी नजर फिल्म दूसरा आदमी से। म्यूजिक दिया है राजेश रोशन ने, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और अपनी मधुर आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनाते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे स्वर दिए हैं किशोर और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है कल्याण जी आनंद जी का संगीत दिया हुआ गाना, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है प्रोफेसर प्यारेलाल और जिसे लिखा है राजेंद्र किशन ने।

0: प्रोग्राम की अगली पेशकश एक महल हो सपनों का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। इस गाने को संगीत से सजाया है रवि ने और इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।
1: एक महल हो।

आनंद बख्शी का लिखा सुंदर गाना मिस्टर नटवरलाल फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

अब पेश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अजनबी से, जिसे म्यूजिक दिया है आर डी बर्मन ने।

अब पेश है लावारिस फिल्म का गाना, जिसके बोल लिखे हैं अनजान ने, म्यूजिक दिया है कल्याण जी, आनंद जी ने, और इस गाने को गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 3, जो आधारित था पुराने फिल्मी गीतों पर। पेश किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
2: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अप।

सभी को मेरी नमस्कार। मैं आपकी रेडियो सखी नेहा धाकड़ लेकर आई हूं आज आपके लिए एक नई कहानी जो हमें सिखलाती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ दे देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और कुछ बड़ा दे देते हैं। तो ऐसी ही कहानी है एक राजा की जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता था और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। तो एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तो रास्ते में चलते चलते उनके शाही कुर्ते का एक बटन टूट जाता है। जब राजा ने बटन को देखा तो उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला कर लाएं जो उनके शाही कुर्ते का बटन लगा सके। ये सुनकर मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी और संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल जाता है। गांव में दर्जी की एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया और दर्जी को कहा गया कि उन्हें राजा के शाही कुर्ते को बटन लगाना है। तो वो दर्जी महल में पहुंच जाता है। महल में पहुंचने के बाद उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन को लगा सकते हैं? दर्जी ने कहा, यह तो बहुत आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुए और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा, इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। ये तो बहुत छोटा सा काम है राजा जी, इसके लिए मैं कोई रकम आपसे वसूल नहीं कर सकता। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह ना सोच ले कि इतने से काम के 2 रुपए तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे मुझे वो मंजूर है। राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने सोचा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए अपनी इज्जत को और बढ़ाने के लिए उसने आदेश दिया कि दर्जी को 2 गांव दिए जाएं। दर्जी ने सोचा कि कहां तो वो 2 रुपए मांग रहा था और कहां वो 2 गांव का मालिक बन गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा सा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई स्वयं रचित कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो हम उसे अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010, 7056413010। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुनते रहो FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: का ये रूप नया है।
1: आंध को पड़ी पल के भारी समझा पुरुष जो देखी

0: You are listening 90.0 FM Radio with a Star. Hum Safar Zindagi Ka.
1: आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरजे शिवानी और लेकर आई हूं आज आपके लिए एक और नई कहानी जिसका शीर्षक है गलतियों से कितना सीखें। बात आइंस्टाइन से जुड़ी है। वह अब जर्मनी छोड़ चुके थे और दुनिया भर के विश्वविद्यालय उन्हें अपने यहाँ नियुक्त करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को ही चुना क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और बौद्धिक था। जब आइंस्टाइन पहली बार प्रिंसटन पहुँचे तब वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे पूछा, सर मैं आपके लिए किन किन उपकरणों की व्यवस्था कर दूँ? आइंस्टाइन ने बड़े ही सहज स्वर में कहा, एक ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक, पेपर और पेंसिल। अधिकारी सूची देकर आश्चर्य में पड़ गया। वह कुछ कहता इससे पहले ही आइंस्टाइन ने फरमाइश की, और हाँ एक बड़ी सी टोकरी भी चाहिए। वह क्यों सर? अधिकारी ने आश्चर्य से पूछा। आइंस्टाइन ने हंसते हुए कहा, अपनी गणनाओं के दौरान मैं जगह जगह गलतियाँ करूँगा तो छोटी टोकरी जल्द ही रद्दी से भर जाएगी। दरअसल आइंस्टाइन बहुत ही सादगी पसंद थे। वह कहते थे कि गलतियां तो आप करेंगे, इनसे सीखिए कि आगे से क्या नहीं करना है। हम सब गलतियां करते हैं पर एक दो गलतियों के बाद ही घबरा जाते हैं, भूल जाते हैं कि गलतियां तो होती ही इसीलिए है कि अपना काम हम सही तरीके से कर सके। साहित्यकार फ्रेंच काफ्का ने कहा था, अच्छा साहित्य लिखने के लिए क्या चाहिए? एक कलम, एक मेज व ढेर सारी रद्दी कागज, ताकि आप बार बार लिखें, उनको काटकर फिर दूसरा लिखें। जाहिर है वैज्ञानिक हो या साहित्यकार, भाव एक ही है कि गलतियों से घबराए नहीं, उनसे आप में निखार आता जाएगा और फिर आप वह कर पाएंगे जो दूसरे ने अब तक नहीं किया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए ताकि हम भविष्य में कुछ बेहतर कर पाएं। इसी के साथ लेती हूँ मैं अब आपसे विदा, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपने आसपास खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।

हमारा यह सफर यूं ही चलता रहा और गुजरती गई सदियां। पनाहगाहों में पनाह लेने की ख्वाहिश सीने में ही दब गई। तुमसे मिलना, तुमसे बिछड़ना एक आदत सी बन गई। बीते लम्हे रुसवाई का रास्ता दे गए और पथरीली रेतीली राहें मंजिल का पता बता गए।

छूट गए साथी, सिमट गई जिंदगी, जज्बा मोहब्बत का टूट गया, बिखर गया, हर पल अपना साया भी पराया होने लगा, जो मिले वो अचानक रूठ गए, यहां के साहिल दरियाओं से बिछड़ गए और इन दरियाओं के पत्थर पानी के लिए तरस रहे हैं। इन्हीं पानियों में कभी चांद आकाश से उतरकर डुबकी लगाया करता था, पर अब सब कुछ अलग है, भिन्न है, जब अपने ही पराए हुए

दिल की बातें ही बातें ही और है तुम्हारी फरामोशी। रंग बिखर पड़े हैं पर रक्स करती है फिजाएं। शायद सोचा होगा कि हवाओं के रुख में बदलाव होगा, पर ये जरूरी तो नहीं कि मौसम बदलते ही तुम लौट आओगे। इन घने बादलों को चीर कर। और यह भी तो जरूरी नहीं कि दिल की बातें हों, बातों बातों में तुम याद आओगे।

एक प्यारा सा गांव है, पर अजनबी रास्ते हैं। किससे मुखातिब हो जाए, हर कोई एक दूसरे से अनजान है। इन फासलों के दरमियां अपने आप को भी पहचानना मुश्किल सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद यहां खुशबू है अपनेपन की, यहां मिठास है मोहब्बतों की, और दूर एक कोने में यहां दर्द भी।

परी आसमां से उतरी थी, मुझे छूकर गुजर गई। अपने दुपट्टे से मेरी नींदों को चुरा ले गई। मेरे कानों में चुपके से कुछ कह गई। ये कुछ लम्हे तुम्हारे नाम हो गए, इनको संजो कर संभाल कर रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे शामिल कर मुझ पे एहसान जताया, नवाजिश करम, शुक्रिया।

नमस्कार, 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त, रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। आज आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर दोबारा हाजिर हुआ हूं। और आज के प्रोग्राम का शीर्षक है कसक एहसासों की। बहुत सी बातें जिंदगी के बीच में बीतती हैं, वक्त बीत जाता है, लेकिन वो चुभन, वो कसक, वो कभी खत्म नहीं होती। और आज आप सबकी उन्हीं कसकों को दोबारा से उभारने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है कसक एहसासों की। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेकिन मैं स्वयं चाहता हूं कि गानों के साथ साथ में आप लोगों से बातचीत भी करता रहूं और अपने ख्यालात भी आपके साथ में बांटता रहूं, क्योंकि अश्क आंखों में उठाते हुए थक जाता हूं। बोझ पानी का उठाते हुए थक जाता हूं। पांव रखते हैं मेरे जज्बातों पे जो, वो क्या जाने, मैं निशानात मिटाते हुए थक जाता हूं। भाई सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ और आनंद बख्शी का लिखा हुआ बॉबी फिल्म का ये गीत।

अब अक्षियों को पास में रहने दिया या नहीं रहने दिया, ये दोनों लव बर्ड्स ही जाने। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप हमारे से रेडियो वितस्ता से प्यार करेंगे ना, तो हम जिंदगी भर निभाने का वादा करते हैं आपसे, क्योंकि नाम की दोस्ती, काम की यारी दूसरों की तरह ये आदत नहीं हमारी। अगर आप भरोसा करेंगे तो हम भी आप ही के सहारे का भरोसा करेंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लता मंगेशकर जी ने सफर फिल्म के बीच में और कल्याण जी अंजी के संगीत में कहा था।

आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा, आपके दिल के जज्बातों को पेश कर रहा हूं आप ही के कार्यक्रम कसक एहसासों की गिल। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। बाहर सावन बरसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बदरा नैनों में छाता है ना, तो दिल पर भी फर्क पड़ता है और जहन पर भी फर्क पड़ता है। फिल्म मेरा साया में लता मंगेशकर को सुनिए, मदन मोहन के संगीत में, जिसके बोल लिखे हैं राजा मेहदी अली खान ने।

हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। क्यों तलाश रही हैं तेरी बेताब निगाहें हमको, क्यों तलाश रही हैं तेरी बेताब निगाहें हमको, खुद में झांक तेरी आंखों में दिखाई देंगे, खुद में झांक तेरी आंखों में दिखाई देंगे। और महबूब जब आसपास कुछ वक्त तक नहीं दिखाई देता ना, तो फिर दिल ही कहता है, दिल जो इज्जत फिल्म के बीच में लता मंगेशकर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में साहिर लुधियानवी की कलम से कहा था, आइए हम सब भी सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

सलीके से हवाओं में भी खुशबू घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में भी खुशबू घोल देते हैं। कुछ लोग दिल की बात आंखों से ही बोल देते हैं। भरोसा फिल्म में लता मंगेशकर को सुनिए, संगीतकार हैं रवि और गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण।

0: आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: बहुत से कस्मे वादे होते हैं मोहब्बत के बीच में, लेकिन बहुत कम वायदे हैं जो पूरे हो पाते हैं। हालांकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं। चलिए छोड़िए उनको, बात वो सुनिए जो मैं कहता हूं आपको, कि दिल में मतलब और जुबान से प्यार न कर, दिल में मतलब और जुबान से प्यार न कर, मेरे महबूब मोहब्बत में ऐसा कारोबार न कर, मेरे महबूब मोहब्बत में ऐसा कारोबार न कर। नौजवानों को हम भूल नहीं सकते, आज इनके लिए भी पेश है ये आजकल का गीत, जिसको सचिन जिगर और साथियों ने गाया है, और सचिन जिगर ने ही इसमें अपना संगीत दिया है। आइए इस गीत के साथ भी हम लोग थोड़ा आनंद लेते हैं और फिर गीतों के नगमों के इस सफर को आगे बढ़ाएंगे।

सब एहसासों की के इस प्रोग्राम में अब हम वक्त के उस पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जहां हमारा और आपका फिलहाल बिछड़ आता है। क्यों? क्योंकि वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपको और ज्यादा इन एहसासों की कसक महसूस करा पाएं। इसलिए अब पेशे खिदमत है हमारा ये आखिरी गीत, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर कहेंगे कि अपनी परछाई में जुल्फे न सवारा कीजिए, अपनी परछाई में जुल्फे न सवारा कीजिए, मैं बन जाऊं आईना बस एक इशारा कीजिए, मैं बन जाऊं आईना बस एक इशारा कीजिए। रेशमा को सुनिए फिल्म हीरो में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इस खूबसूरत गीत के साथ में हम आपसे चाहेंगे इजाजत। बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक और नया प्रोग्राम लेकर। हाँ, आपका दोस्त, आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता है कि अगर आप हमारे को इतना प्यार देते ही हैं तो जताते क्यों नहीं। आपको हमारे प्रोग्राम्स, हमारे गीत या रेडियो विस्तार द्वारा प्रोग्राम पेश किए जाने वाले सभी कार्यक्रम कैसे लगते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें बताइए और हमें ये भी बताइए कि किस तरह के प्रोग्राम और कार्यक्रम आप और सुनना पसंद करते हैं, ताकि हम वो बनाएं जिसे आप चाहें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010, 7056413010। तो अब अपने रेडियो दोस्त, रेडियो हम सफर नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत। फिर मिलता हूँ एक और प्रोग्राम में एक और नया कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी। स्टूडियो में आमंत्रित हैं कवित्री श्रीमती रिद्धम डडियाला, उनसे बात करेंगे भारत सपोरी।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सपोरी लेके आया हूँ काव्य गोष्ठी कार्यक्रम का एक नया अंक। हमारे प्रदेश और अंबाला के कवि कवित्री आज देश विदेश में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अपनी कविताओं के मधुर शब्दों से वो सब बता देते हैं जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा है। आज ऐसे ही मेहमान और एक कवित्री हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं। उनसे आपको रूबरू करने से पहले ये बताना जरूरी समझता हूँ कि गत 30 जुलाई 2023 को उनकी पहली कविता संग्रह है अनकहे एहसास का विमोचन हुआ अंबाला की एक सांस्कृतिक संस्था कला शिल्पी द्वारा। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती है उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती है कदरदानों की। करते हैं स्वागत आज की शख्सियत कवित्री श्रीमती रिद्धम डडियाला जी का। आपका स्वागत और अभिनंदन FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के स्टूडियो में।
4: बहुत शुक्रिया आपका।
3: आप अपने जीवन के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, जन्म कहाँ हुआ और शायरी की ओर कब से आप रागिब हुए?
4: जी, तो मेरा जन्म हुआ शाहबाद मारकंडा में, हरियाणा, विच इज कॉल्ड लैंड ऑफ प्लेंटिफुल ग्रेन्स। बचपन से ही मैं अपने फादर से काफी इंस्पायर्ड रही हूँ। मैंने अपनी पहली कविता आई थिंक 10 साल की उम्र में लिखी होगी। तब से ये था कि दिमाग में जो भी इमोशन आए, एहसास आए, जो आप नहीं कह पाओ, वो लिखने के माध्यम से एक्सप्रेस करती थी। तो आई स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 10 आई थिंक। मेरी एडुकेशन विश्वास स्कूल शाहबाद मारकंडा में 10th तक हुई। फिर मैं चंडीगढ़ चली गई, 11th 12th बी कॉम ऑनर्स एम कॉम सब मैंने चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। मेरे करियर की शुरुआत एसडी कॉलेज अम्बाला कैन से ही हुई। आई वर्क देयर एज अ लेक्चरर फॉर 2 ईयर्स। उसके बाद शादी दिल्ली में हुई, वहाँ एमिटी यूनिवर्सिटी में मैंने 3-4 साल काम किया। करंटली आई एम वर्किंग एंड स्टेइंग इन दुबई, वहाँ पे मैं डीपीएस स्कूल में हाई स्कूल टीचर हूँ। और शायरी का शौक बहुत ज़्यादा है, तो इट्स कंटिन्यूइंग विद मी एज आई एम ग्रोइंग, इट इज़ ग्रोइंग।
3: हमारे श्रोता इस समय ये जान रहे हैं कि जब हम जिंदगी का सफर शुरू करते हैं तो बहुत सारे मरहलों को हम क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने जैसे कहा कि आप ने पंजाब अम्बाला, अब आप दुबई में रह रहे हैं, तो जो ये सफर है हमारी जिंदगी का, क्या एक अनुभव मिलता है हमें जब हम हर दिन कुछ नया देखते हैं?
4: आई एम श्योर, आई थिंक हम हर समय कुछ ना कुछ सीखते हैं, और सीखने की ना कोई उम्र है, ना कोई टाइम है, ना कोई जगह है। बीट चंडीगढ़ या अम्बाला या दिल्ली या फिर दुबई, हर स्टेज पे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी। इनफैक्ट कहने को हम पढ़ाते हैं बच्चों को, बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो यस, इट हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल दीज ईयर्स। मैंने पर्सनली बहुत सीखा, बहुत लर्न किया, बहुत ग्रो किया मेंटली, इमोशनली, इन एवरी वे। हाँ जी, तो आप सही कह रहे हैं कि हम इट इज अ लर्निंग जर्नी।
3: और कवि या कवित्री के लिए ये जो सफर है, ये कितना अहम और जरूरी है?
4: पर्सनली ये जैसे आपने बताया काव्य संग्रह, दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्शन, ये मेरी जर्नी की ही रिफ्लेक्शन है। ये पूरी जिंदगी में जो जो मैंने सीखा है, जो जो उतार चढ़ाव देखे हैं, जो जो इमोशंस मैंने जिए हैं, तो ये मैंने कविता के रूप में ही एक्सप्रेस किए हैं। तो पर्सनली आई फील कि किसी भी पोएट या पोइटिस के लिए ये इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं, ताकि वो इनको शब्द के रूप में एक्सप्रेस कर सकें।
3: बहुत सही कहा आपने। आपका जो नाम है रिदम है, रिदम का मतलब लय होता है, जो संगीत के साथ जुड़ा है। क्या शायरी में भी लय होना जरूरी है?
4: आई थिंक जिंदगी में हर चीज में लय होना जरूरी है, ताल होना जरूरी है, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे शायरी। शायरी में तो ताल या लय का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, दैट ऑल्सो इज रिदमिक पोइट्री, बिकॉज मेरी हर उसमें आप देखेंगे कि ताल है। कहीं कोई भी चीज़ बेताली होगी तो हम जिंदगी जी नहीं पाएंगे या उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आई थिंक यस, हर चीज में लय ताल की बहुत जरूरत है।
3: हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये काव्य गोष्ठी कार्यक्रम है, तो अब हम कविता की ओर आते हैं। आपकी पहली कविता संग्रह से कौन सी कविता का पाठ हमारे श्रोताओं के लिए आप आज सबसे पहले करना चाहेंगे?
4: तो मेरी ये कविता जो मुझे बहुत पसंद है, ये औरत पे डेडिकेटेड है जी। तो मैं ये कविता सुनाना चाहूंगी। ये औरत है, कभी लक्ष्मी कभी दुर्गा कभी चंडी बन जाती है, ये औरत है यारों कमाल कर जाती है। टूटे दिल के टुकड़ों को जोड़ कर रखे जो, ख्वाहिशों के बिखरे मोती संजो के रखे जो, अपने आंसुओं को मुस्कुराहट में छुपाती है, ये औरत है यारों कमाल कर जाती है। कभी पिता कभी पति कभी बच्चों की सुने, ये भी उड़ना चाहे पर ख्वाब उनके लिए बुने, गीली मिट्टी है ये हर सांचे में ढल जाती है, ये औरत है यारों कमाल कर जाती है। ऐसा नहीं कि ये कम है किसी तरह, है जोश है काबिलियत और है लबों पर दुआ, अकेले राह पर निकले काफिला बनाती है, ये औरत है यारों कमाल कर जाती है। कभी लक्ष्मी कभी दुर्गा कभी चंडी बन जाती है, हाँ ये औरत कमाल कर जाती है।
3: बहुत खूब, बहुत
4: शुक्रिया।
3: रिदम जी, जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे थे तो आप केवल पढ़ ही नहीं रहे थे, बल्कि आप अपनी जो शक्ति है उसको भी बयां कर रहे थे। हमारा परिवार तभी पूरा होता है जिसमें माँ होती है, बहन होती है और बाकी सारे हमारी बेटी होती है। तो जब आप ये शब्द लिखते हैं तो क्या उस समय ख्याल होता है जब आप ये शब्दों का जाल बुन लेते हैं।
4: आई थिंक जो जब मैंने ये कविता लिखी थी मैंने देखा कि वी विमेन हम यूजुअली खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम दूसरों के हिसाब से जीते जाते हैं। जब पहले हम सुनेंगे अपने पिता की, फिर बड़े हुए पति की सुनी, अब बच्चे सुनाते हैं कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो। हमारे अंदर भी ख्वाब है, हम भी उड़ना चाहते हैं, बट उनको देखते हुए हम सोचते कि नहीं पहले पिता के लिए कर लें, फिर पति के लिए कर लें, फिर बच्चों के लिए कर लें। तो वी एक्चुअली अंडर एस्टिमेट आवर सेल्व्स और हम अपने लिए नहीं जीते। तो दिस पोएम आई रोट टू मे बी इंस्पायर अदर वुमेन सो दे शुड रियलाइज देयर पोटेंशियल, उनको पता चले उनमें कितनी काबिलियत है और वो खुद के लिए भी थोड़ा जीना शुरू करें। तो दिस इज माई वे ऑफ मोटिवेटिंग अदर वुमेन, या उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना।
3: ये एक बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। हमारे देश में इस समय आप जैसे लोगों की जरूरत है जो बाकी नारी शक्ति को या तो उनको जगाए या उनको प्रोत्साहित करें ताकि जो काबिलियत उनमें है वो काबिलियत को सामने ले आए और हम देश को मिलजुल कर आगे की ओर लेके जाएं।
4: जी शुक्रिया। एक और मैंने पोएम, जैसे आपने माँ का जिक्र किया तो मैंने एक माँ पर पोएम लिखी थी। ऑफ कोर्स कोई भी घर माँ के बिना पूरा नहीं हो सकता। एज अ मदर आई रियलाइज कि हम ज्यादा अपने बच्चों के लिए जीते हैं और कम अपने आप के लिए जीते हैं। तो ये पोएम मैंने डेडिकेट की है हर माँ को। तो कहते हैं, रब का दूसरा नाम होती है, माँ जैसी बस माँ होती है। घर वो मुकम्मल है बस, माँ की इबादत जहां होती है, माँ जैसी बस माँ होती है। हर रिश्ते में है खुदगर्जी, लालच बिन बस माँ होती है, रब का दूसरा नाम होती है। हर कोई जब मुंह फेरे इसके लब पर हां होती है, माँ जैसी बस माँ होती है। माँ की गोद है मुझे बताती क्या दोपहर में ठंडी छां होती है, माँ जैसी बस माँ होती है।
3: बहुत खूब, आपने माँ शब्द, इतना बड़ा शब्द है, इसके बारे में जितना भी हम वर्णन करें पूरी जिंदगी में
4: जी
3: वो कम है। माँ के लिए, पेरेंट्स के लिए हमें करना चाहिए, जितना भी हम करें उतना कम है, क्योंकि हमारा वजूद हमारे माता पिता हैं।
4: जी बिल्कुल।
3: रिदम जी, क्या आप मानते हैं कि लेखिका बनना आपकी विरासत में है? क्योंकि आपके पिताजी सरदार कुलवंत सिंह रफीक जी एक जाने माने कवि है हमारे देश के।
4: जी बिल्कुल, मैं उनको देखते हुए ही बड़ी हुई हूँ और मैं आई थिंक मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। अच्छा इंसान बनना, अच्छा पोएट बनना, अपने कला को कैसे बेटर बनाना, वट एवर आई हैव लर्नड आई ओ इट ऑल टू यू, ऑल टू हिम। जहाँ तक भी जो भी अचीव किया है, पोएट्री बुक हो या स्टेज कंडक्ट करना हो या एंकरिंग करनी हो, आई रिमेम्बर आई वॉज अवॉर्डेड बेस्ट ओरेटर इन द डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, कुरुक्षेत्रा डिस्ट्रिक्ट, एंड आई ओ इट ऑल टू हिम। उनको देख के कैसे वो बोलते हैं, एज अ इंसान हाउ ही इज एज अ ह्यूमन बींग, आई थिंक आई हैव लर्नड दिस ऑल फ्रॉम हिम ओनली। और ही इज़ अ डिक्लेयर्ड पोइट इंटरनेशनली ऑल्सो, वो मुशायरों में पार्टिसिपेट करते हैं, पोइट्री कहते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो अगर मैं उनका 1% भी बन पाऊँ तो आई थिंक आई विल फील कि आई हैव डन जस्टिस। तो यस, लेखिका बनना मेरी विरासत में ही है, इट्स अ गॉड गिफ्ट। ऑफ कोर्स ऑल माइटी की ब्लेसिंग्स के बिना और उनकी ब्लेसिंग्स, माय फादर की ब्लेसिंग्स के बिना ये नहीं हो सकता था।
3: बहुत अच्छी बात है। सरदार कुलवंत सिंह रफीक लिखते हैं, रफीक जो है एक उर्दू लफ्ज है, रफीक का मतलब सबका रहबर, सबको रास्ता दिखाने वाला
4: जी।
3: तो ये जो तखलुस है, तो इस तखलुस के बारे में क्या आप बता सकते हैं, उन्होंने अपना जो तखलुस है रफीक क्यों रखा?
4: आई थिंक ये जो तखलुस है उससे वो पूरा जस्टिस करते हैं। आई थिंक दिस इज वॉट ही इज, ही इज अ रहबर, ही इज अ फ्रेंड, ही इज अ गाइड, हर किसी के साथ चलने वाले हैं, हर किसी की हेल्प करने वाले हैं, चाहे आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करनी पड़े। तो आई थिंक द वर्ड रफीक इज सिनोनिम टू हिज पर्सनैलिटी, तो उनको पूरा सूट करता है, पूरा जस्टिस करता है। और उन्होंने शायद ये सोच के रखा कि वो ऐसा बनना चाहेंगे और हाँ उन्होंने ये अचीव किया है।
3: बहुत अच्छी बात है। और साथ में जब परिवार पूरा होता है एक बच्चे के लिए, माता और पिता, और ऑब्वियसली माँ जो आपके जीवन में एक स्थान रखती हैं, सबके जीवन में स्थान रखती हैं, माँ के बारे में भी आप अगर कुछ बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा।
4: जी, माँ के बिना तो हम खुद सब इनकम्प्लीट हैं जी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार जो खुदा थे वो माँ से रूठे थे, तो खुदा ने माँ से कहा कि सब कुछ तो मैं करता हूँ, तुम्हें क्यों सब इतना प्यार करते हैं। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि एक रोज खुदा ने रब माँ से शिकायत की है कि क्यों मेरे बच्चों ने तेरी इबादत की है। हंसकर बोली माँ कि 9 महीने ज्यादा मैंने इसकी हिफाजत की है, हर गम सहा पर न शिकायत की है, तो क्यों ना तेरे बच्चों ने फिर मेरी इबादत की है और मुझसे मोहब्बत की है। तो जी, माँ इज सिनोनिमस विद खुदा, हमारे लिए तो खुदा धरती पर माँ ही है।
3: बहुत खूब आपने माँ का वर्णन उस तरीके से किया, और मैं अपने शब्दों में जब माँ की बात करता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ माँ अनमोल
4: जी।
3: अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप संगीत भी सुनती हैं?
4: जी जी जी।
3: तो अगर आपको माँ को याद करना हो कभी, तो आप किन शब्दों में अपने पेरेंट्स को, खास करके माँ को याद करती हैं? क्या आप कुछ उनके लिए गुनगुनाते हैं या कैसे याद करती हैं?
4: जी, तो माँ के लिए मुझे गाना बहुत पसंद है, तो मैं वो गुनगुनाती हूँ कि

तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस समय FM 90.0 पर कार्यक्रम काव्य गोष्ठी और बात हो रही है माँ की। आइए आपको सुनाते हैं रिदम जी का ये मन पसंद माँ के लिए ये गाना।

0: रिदम जी, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, और ये हमारे श्रोताओं के मन में भी ये प्रश्न होगा कि लेखक के मन मस्तिष्क में कब लिखने का ख्याल आता है? क्या कोई समय निर्धारित होता है लिखने के लिए?
1: आई थिंक कोई समय निर्धारित नहीं होता। जब भी मन में कुछ कोई फीलिंग या कोई इमोशन बहुत बढ़ जाता है और हम उसको नहीं कह पाते किसी और से, तो पर्सनली आई फील कि तब हम उसको पोएम्स के माध्यम से जाहिर करते हैं। जैसे आई थिंक श्रोता भी मुझसे अग्री करेंगे कि हम जो लिखते हैं, हम लोगों के पास एक डायरी ज़रूर होती है। जब भी कोई इमोशन, कोई फीलिंग, कुछ लव्स हमें आए, कुछ शब्द हमें लगे कि वी शुड बी राइटिंग दीज और एक्सप्रेसिंग दीज, तो हम उस डायरी में लिख देते हैं। तो ऐसा कोई ख्याल नहीं है। कई बार तो मैंने बच्चों की इन्विजिलेशन करते हुए, कुछ देखते हुए मेरे मन में ख्याल आया तो मैंने वहीं से टिश्यू पेपर लिया और वो पोएम मैंने वहीं पर लिख दी। तो ये ख्याल, ये इमोशन कभी भी हम पे हावी हो सकता है और इसका निकलना बहुत ज़रूरी है। तो यूजली वी राइट ऑन अ डायरी या फिर कोई भी पीस ऑफ पेपर जो भी अवेलेबल हो।
0: तो क्या हम इस बात को माने कि अगर एक ख्याल दिमाग में आता है और अगर हम उस समय उसको लिखे नहीं, नोट नहीं करेंगे, क्या वो हमारे मन में रहेगा कि नहीं रहेगा?
1: आई थिंक थोड़े समय तक ही मन में रह पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको लिख लें कहीं, ताकि जो भी शब्द जो भी हमारे मन में आए हैं वो शब्द हम उसी तरह से एक्सप्रेस कर पाएँ जैसे हमारे दिमाग में है। तो लिख पाएँ तो बहुत अच्छा होगा कि वो हमें उसी टाइम याद रहेगा। बाद में हो सकता है कोई शब्द आगे पीछे हो जाए, तो आई पर्सनली फील लिखना अच्छा है।
0: तो इस डायरी को आप कैसे श्रोताओं के सामने रखेंगे, जिस डायरी की आपने बात की?
1: जी, मेरे लाइफ में मेरी डायरी ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। छोटे होते से ही, जब स्कूल में किसी सहेली से ही कोई छोटी सी झड़प हो जानी या कुछ, तो मैं वो भी आके अपनी डायरी में लिखा करती थी। तो डायरी मेरी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही है। तो मैंने एक पोएम अपनी डायरी को डेडिकेट की है। तो इट गोज़ कि जब शाम को थक हार कर मैं बैठ जाती हूँ, क्या हालात हैं, जज्बात हैं, इसको बताती हूँ। ये कुछ नहीं कहती, ये सब सुनती है, संग मेरे नामुमकिन से ख्वाब बुनती है। कहीं किसी पन्ने में कोई चोट छुपाई है, तो कहीं अशकों से भीगी स्याही है। कहीं लिखी मैंने कोई अधूरी कहानी है, कहीं बचपन के पल, कहीं गुस्ताख जवानी है। दो पन्नों में एक सूखा गुलाब है, दिल के सौदों का जो करता हिसाब है। लिख कर कहीं कोई धुन मैं गुनगुनाती हूँ, जो अनकहे एहसास हैं इसको बताती हूँ। जब शाम को थक हार कर मैं बैठ जाती हूँ, क्या हालात हैं, जज्बात हैं, इसको बताती हूँ। ये है मेरी डायरी।
0: बहुत खूब आपने इस डायरी के माध्यम से ये बताया, और इसमें आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अनकहे एहसास। तो अनकहे एहसास के बारे में आप क्या हमें विस्तार से बता सकते हैं, ये अनकहे एहसास क्यों है?
1: जी, तो एज वी मूव ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ, तो बहुत सारे ऐसे एहसास होते हैं, ऐसे इमोशंस होते हैं जो हम किसी को कह नहीं पाते। तो मेरे जैसे लोग तो वो डायरी में लिख लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके जज्बात उनके मन में ही रह जाते हैं। तो मैंने जो मेरी पहली बुक है उसका शीर्षक है अनकहे एहसास, बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेरे इमोशंस हैं जो मैं किसी को कह नहीं पाई, तो वो मैंने अपने पोएम्स के माध्यम से जाहिर किए हैं। तो हेंस द टाइटल अनकहे एहसास। ऐसे बाकी लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी किसी से एक्सप्रेस नहीं की होंगी, तो वो हम ऐसे कुछ फीलिंग्स हम इस बुक में भी पढ़ सकते हैं।
0: रिदम जी, मैंने आपकी जो ये अनकहे एहसास है इसको पढ़ा है
1: जी।
0: इस पे मेरी जिंदगी के साथ एक कविता जुड़ी है जिसका शीर्षक है अपना घर।
1: जी,
0: घर एक व्यक्ति के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसके जीवन में उसका क्या असर होता है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए ये कविता जरूर पढ़ें।
1: जी, ये कविता अपना घर मैंने ये सोचकर लिखी थी कि हम ता उम्र, स्पेशली हम औरतें, ता उम्र अपना घर ढूंढ रहे होते हैं। पहले जब माँ बाप के घर में होते हैं तो होता है कि चलो इसने दूसरे के घर चले जाना है, जब शादी होती है उनके घर जाते हैं तो बोलते हैं कि ये तो माँ बाप के घर से आई है। तो हम ताउम्र यही ढूंढ रहे होते हैं कि हमारा कौन सा घर है। लाइक व्हेन आई शिफ्टेड टू दुबई, ऑफकोर्स वो उनका घर है जिनसे हमने लीज पे लिया है, तो मैं यही सोचती हूँ कि हमारा घर कौन सा है। तो आई फेल्ट कि वी शुड बी मेकिंग अ घर इनसाइड अस, हमें अपना घर अपने अंदर ढूंढना चाहिए ताकि कुछ भी बदले, कोई आए कोई जाए, कोई तुम्हें वैल्यू करे या नहीं करे, तुम खुद को वो वैल्यू दे पाए।
0: हमारा अपना घर हमारे साथ चलता रहे।
1: जी, जी जी जी। और चाहे निगाहें बदलें, वफाएं बदलें, आपका घर आपके अंदर हो तो आप कभी बेघर नहीं होगे। तो उस पे मैंने लिखा था अपना घर। तो ये दिस गोज की सजा मिली गलतियां हम मगर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं। जहां न कोई बोले कि हम धन पर आए हैं, ना कोई सोचे कि दूजी जगह से आए हैं, जो हर हाल में अपना समझे वही नजर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं। पड़े जो हम पर पत्थर इसकी नींव में भर देंगे, प्यार वफा के रंगों से दीवारें रंग देंगे, जो मंजिल तक पहुंचाए वो एक डगर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं। जो फिर किसी के दिल में आशियां बनाएंगे, जो बदली उनकी वफाएं तो बेघर हो जाएंगे, जो मांगी थी दुआएं उनमें असर ढूंढते हैं, अपने अंदर ही अब अपना घर ढूंढते हैं। सजा मिली गलतियां हम मगर ढूंढते हैं, बस अब अपने अंदर अपना घर ढूंढते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। आपने रिदम जी मेरे अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं इस कविता के माध्यम से। हमारी कोशिश है कि हम जब भी कोई शब्द लिखें, अगर वो किसी के लिए मरहम का काम करती है, इससे बेस्ट कोई भी चीज नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं अपने जीवन में अपना घर खो चुका हूं
1: जी।
0: और पिछले 33 वर्षों से मैं अपने ही देश में विस्थापित हूं। तो मेरे लिए घर कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बड़ी बात है, तो आपने मुझे एक रास्ता दिखा दिया कि वो जो घर हम पीछे छोड़ आए हैं वो घर आज के बाद मेरे मन में होगा, जहां मैं हूं वहां मेरा घर होगा। इसके लिए आपका, हमारी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम काव्य गोष्ठी और आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है श्रीमती रिदम डडियाला जी। ये इस कार्यक्रम का अंतिम भाग है, आइए बातचीत जारी रखते हैं रिदम जी से। रिदम जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि कविता या शायरी मरहम या सुखद एहसास का अनुभव पढ़ने वाले को या सुनने वाले को देती है?
1: जी बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ फील कर रहे होते हैं बट हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या चीज़ तंग कर रही है। पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता है और जब कभी मैं किसी और की शायरी सुनती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इस चीज़ को हम ऐसे टैकल कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कई बार ऐसा लगता है किसी को सुन के या समझ के ही सॉल्व हो गई हैं। तो बिल्कुल, आई थिंक पोएट्री कैन बी अ मीडियम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को कंफर्ट देने के लिए, किसी को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बहुत इश्यूज पे। तो यस, इट इज डेफिनेटली अ मीडियम। तो मैंने ये एक कविता लिखी थी कि आई फील कि हम लोग ना लेट गो नहीं करते। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा, प्रोफेशनल लाइफ में देखा कि हम पास्ट को पकड़ कर बैठे हैं, अपने पुराने जख्मों को पकड़ कर बैठे हैं जो हमें मेंटली खराब कर रहा है, हमें इमोशनली इम्पैक्ट कर रहा है, हमारा हेल्थ खराब कर रहा है। तो इफ दिस पोएम ऑफ माइंड कुड हेल्प एनीवन टू लेट गो देन आई विल फील कि मेरा ऑब्जेक्टिव एक अचीव हुआ है
0: जी।
1: तो मैंने एक पोएम लिखी थी, रोको मत जाने दो
0: जी।
1: तो वो कहते हैं कि रोको मत जाने दो, बचपन में ये कहीं पढ़ा था, पढ़कर बस हवा किया था, इन लफ्जों में थी कितनी गहराई, ये बात आज समझ में आई। रोको मत जाने दो, जाने दो हर उस बात को, अधूरी सी मुलाकात को, हर एक झूठे जज्बात को, आंसुओं में भीगी रात को, रोको मत जाने दो। जो तुम्हारी आहट से उनका चेहरा न खिले, आंखें नम हो और दिल न पिघले, संग तुम्हारे चल उन्हें मंजिल न मिले, दर्द देने के तुम्हें चलते रहें सिलसिले, तो रोको मत जाने दो। हर ख्वाब हो पूरा जरूरी नहीं, हाँ थी एक कहानी अधूरी रही, शायद हर तरफ मजबूरी रही, सुकून से बढ़कर कुछ जरूरी नहीं, तो बस रोको मत जाने दो।
0: हाँ बस जाने दो
1: जी।
0: बहुत खूब आपने ये कविता पढ़ी और रिदम जी से जानना चाहूंगा कि रिदम जी का जीवन में लक्ष्य क्या है?
1: आई थिंक एज अ टीचर आई रियली लव माई प्रोफेशन। तो इफ आई से प्रोफेशनली एज अ टीचर, मेरा लक्ष्य है टू हेल्प माई स्टूडेंट्स ग्रो, टू हेल्प देम लर्न एकेडेमिकली नहीं, पर्सनली, कि वो अच्छे इंसान भी बने, कामयाब इंसान होने के साथ साथ। तो प्रोफेशनली येस, आई वॉन्ट टू टच देयर लाइव इन सच अ मैनर कि दे नो दैट दे हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बींग, और जो वैल्यूज हम सिर्फ पढ़ाते हैं वो बच्चे उन वैल्यूज को इनकलकेट कर सके, बाहर मेरे स्टूडेंट्स भी और घर पे मेरे अपने बच्चे भी। तो प्रोफेशनली यस, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। पर्सनली एज अ पोइटिस, मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं शब्द लिखती हूँ, आई जस्ट होप कि वो शब्द किसी को कम्फर्ट दे सकें, किसी को अंडरस्टैंडिंग दे सकें, किसी को इंस्पायर कर सकें, जो थका हो, हारा हो, उसको मोटिवेट कर सकें टू लिव लाइफ अगेन, एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग जॉय टू देम, आई वॉन्ट टू इंस्पायर देम। तो आई थिंक दिस इज माई वे, दिस वुड बी माई वे ऑफ गिविंग बैक टू माई रीडर्स। तो जी, यही मेरा लक्ष्य है।
0: इससे और बड़ा लक्ष्य जीवन का क्या हो सकता है कि अगर हम जीवन में किसी के लिए एक रास्ता बना सकें या हम उनको प्रेरणा दे सकें, हम उनको प्रेरित कर सकें। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी और हमने कोशिश की कि आज रिदम जी की जो लिखी कविताएं हैं, उनके जो शब्द हैं, वो हम आप तक पहुंचाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हम अपनी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, रिदम जी के अच्छे दिनों की कामना करते हैं। वो ऐसे ही लिखते रहें और हमारे भारत देश का नाम जहां भी वो विश्व में जाएं, वहां उस नाम को और बड़ा करें, हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और अंतिम प्रश्न अभी रह गया है रिदम जी, आप एक कवित्री है जो बच्चे या और लोग कविता लिखना पसंद करते हैं या लिखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आप प्रेरणा स्वरूप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
1: आई थिंक हमारा देश और आगे बढ़ सकता है कि जब हमारी नारी शक्ति भी अपना योगदान दे हर तरह से, जो भी उनमें टैलेंट्स हैं दे शुड ब्रिंग देम फॉरवर्ड, वो अपने ख्वाबों को जिएं, अपने एहसासों को दबाएं नहीं, उनको खुल के बताएं वो क्या करना चाहती हैं, वो आगे आएं। आई थिंक वी हैव टैलेंट इन अबंडेंस इन इंडिया, बट वो कहीं छुपा बैठा है। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल दी विमेन कि उनमें जो भी आर्ट है वो उस आर्ट को लेके सामने आए, और दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन सो मेनी वेज, एंड सो दे शुड बी डूइंग दैट, दे कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर विमेन एज वेल। तो यस, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि अपना योगदान दें, प्लीज सामने आए और पंख फैलाकर उड़ें।
0: बहुत खूब, और इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम का करते हैं समापन, ये उम्मीद के साथ कि हर कोई नारी शक्ति अपनी काबिलियत के साथ आगे आए, अपना योगदान दे जैसे वो देती रही हैं आज तक, अब कुछ नए अंदाज से दें। और हम आपसे विदा चाहते हैं, मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, किसी और कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक नमस्कार, जय हिंद जय भारत।
1: नमस्कार, जय हिंद जय भारत।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी, आज के मेहमान थे कवित्री रिद्धम डडियाला, रिकॉर्डिस्ट व एडिटिंग दीपक कुमार, निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भरत सुपोरी।
3: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your reaction.

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: Kay Dalaj Mehl, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नूं। शब्द नेक कमाईयां ते इस शब्द नूं आवाज दित्ती है सिंगर बॉबी सिंह जी ने, ते लिखिया सुरिंदर सरताज जी ने, ते इस शब्द की वीडियो जे एस कलवाना जी ने की है। इस वीडियो च काम करने वाले कलाकार पुनीत खन्ना जी, हरदयाल चंद जी, इंदरा जोसन जी, निर्वैर चहल जी ते होर कलाकार। ते इस शब्द नूं प्रोड्यूस किया है हरबंस लाल खन्ना जी ने, ते तुसी इस शब्द की वीडियो भी देख सकते हो नानक गुरबाणी 20 यूट्यूब चैनल ते जाके। शब्द का आनंद माणो ते सब नूं शेयर करो। थैंक यू सो मच।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अमने उम्मीद से के मारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहे।

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِتَسْتا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी ये प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: रेडियो विदस्ता हर पल ये रिश्ता निभाए रखता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का FM 90.0 MHz पर। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट कृष्णा।
1: और मैं हूँ आपकी हमकदम आपकी सहेली नैना। आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और शुभ दिन।
0: बिल्कुल, और नैना सच बताऊं तो इस एक दिन का, इस खास पल का हमें पूरे हफ्ते बेहद बेसब्री से इंतजार रहता है।
1: अरे हाँ कृष्णा जी, सिर्फ तुम्हें ही नहीं हमारे तमाम सुनने वालों को भी इस दिन का इंतजार रहता है, क्योंकि आज का दिन किसी आम दिन जैसा नहीं है। आज का दिन है हमारे जज्बातों का, आपकी पसंद का। आज वक्त है आपके पसंदीदा शो आपकी फरमाइश का।
0: हफ्ते भर का इंतजार और यादों का ये कारवां आपकी फरमाइश लेकर आ गया है फिर से यहाँ। जी हाँ, पूरे हफ्ते हम आपके संदेशों का इंतजार करते हैं, क्योंकि आपकी जो फरमाइशें होती हैं वो सिर्फ गानों की डिमांड नहीं बल्कि आपके दिल के खूबसूरत भाव होते हैं, आपकी मोहब्बत और आपकी यादें होती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा कृष्णा जी, और हमारी बस यही एक छोटी सी प्यारी सी कोशिश रहती है कि आपके दिलों के इन खूबसूरत भावों को, आपके दिलों की इस छुपी हुई आवाज को अपने रेडियो तरंगों के जरिए सुरों में पिरोकर वापस आप तक पहुंचा सकें।
0: तो बस आज के इस सफर में मैं यानी कृष्णा रहूंगी आपकी मुख्य संचालिका,
1: और हर कदम पर हर फरमाइश पर आपका और कृष्णा जी का साथ निभाऊंगी मैं यानी आपकी रेडियो दोस्त नैना।
0: किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सुरमई शाम हो और अपनों का साथ हो, सुरमई शाम हो और अपनों का साथ हो, तरंगों पर बहती हुई कोई खूबसूरत बात हो। तो चलिए बिना देर के खोलते हैं फरमाइशों का ये खूबसूरत पिटारा और शुरू करते हैं आज का ये सुहाना सफर। सुनते हैं आज का पहला गाना आप ही की पसंद का सिर्फ FM 90.0 रेडियो विदस्ता पर।

0: भाई, क्रिसमस के बाद आज ही गाना सुना तुम्हारा। ये लो नोटा। अरे इस घर में बहुत कुछ है, बादाम, पिस्ता, काजू, गर्मा गर्म समोसे।
1: मैं इस घर का नमक नहीं खाऊंगा।
0: अरे नमक नहीं खाओगे तो मत खा, इस घर में बहुत कुछ है, केक भी है, हलवा, बादाम।

0: उम्मीद करते हैं आपको ये गीत पसंद आया होगा। इसकी फरमाइश हमारे पास आई थी पूजा विहार अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता थे प्रेम राजपूत, सुमेश कुमार, रोहित, दिलबाग, शम्मी और अनु जैन। ये गीत था फिल्म 10 नंबर से, जिसे अपनी आवाज दी थी मुकेश ने। लेती हूँ अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है पिन तेजा मोहड़ी अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है बंशी लाल संधु। ये सुनना चाहते हैं फिल्म ए फूल दो माली का गीत। गीत के बोल हैं ये पर्दा हटा दो। इस गीत को अपनी आवाज दी है आशा भोसले जी ने और मोहम्मद रफी ने। इस गीत को सुनने वाले अन्य श्रोता हैं कबीर सिंह संधु, जसबीर सिंह संधु, वरनीत कौर, पवनीत कौर संधु और सारा संधु परिवार। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये मधुर सा गीत।
1: ये पर्दा

0: हटा दो।
1: लेते हैं अगली फरमाइश जो आई है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। यह सुनना चाहते हैं फिल्म फांसी से गीत। गीत के बोल हैं, जब आती होगी याद मेरी तेरा दिल तो धड़कता होगा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित ने। पेश है इन सभी का फरमाइशी गीत।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाले श्रोतागण हैं विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आंसू बन गए फूल का गीत। गीत के बोल हैं जाने कैसा है मेरा दीवाना। गीत को आवाज दी है किशोर कुमार और आशा भोसले जी ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

लेते हैं अगली फरमाइश जो आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और साथ ही मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुरहेकर। यह सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हमराज से गीत। गीत के बोल हैं नीले गगन के तले। इस गीत को आवाज दी है महेंद्र कपूर ने। तो आइए सुनते हैं इन सभी का फरमाइशी गीत।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है चंद्ररूप नगर बबियाल अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं मदन गोपाल सैनी जी, ये सुनना चाहते हैं फिल्म मेरे महबूब का गीत। गीत के बोल हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम। इस गीत को अपने मधुर आवाज से संवारा है लता मंगेशकर जी ने। तो पेश है मदन गोपाल जी की फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

तो लेते हैं अगली फरमाइश जो आई है हमारे पास अंबाला कैंट। भेजने वाले श्रोता का नाम है स्नेहा, जो सुनना चाहती हैं फिल्म बरखा से गीत। गीत के बोल हैं तड़पाओगे तड़पालो। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने, तो आइए सुनते हैं।

चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि एक भक्ति संगीत है, जिसकी फरमाइश हमें आई है अम्बाला कैंट से। भेजने वाली श्रोता है मंजू, ये सुनना चाहते हैं भक्ति संगीत मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। पेश है मंजू जी का एक खूबसूरत सा भक्ति पूर्ण गीत।

तो पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है अंबाला सिटी से। भेजने वाले श्रोता हैं शगुन गोडियाल। यह सुनना चाहते हैं फिल्म अखियों के झरोकों से गीत। गीत के बोल हैं अखियों के झरोकों से। इस गीत को अपनी आवाज से संवारा है हेमलता ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का फरमाइशी गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। जारी है प्रोग्राम आपकी फरमाइश। अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें भेजिए अपनी फरमाइश, गीत के बोल, बोल के साथ अपना नाम और अपने दोस्तों का नाम हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर से 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। तो चलिए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो हमारे पास आई है दयालबाग अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है हनी, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म जुगनू का गीत। गीत के बोल हैं, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। इस गीत को अपनी आवाज से संवारा है किशोर कुमार ने। तो पेश है इनकी फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।
1: अरे वही तो है

लेते हैं अगली फरमाइश जो आई है कोलकाता से। सुनने वाले श्रोता हैं राजीव, वैशाली, मिनी और विराज। यह सभी सुनना चाहते हैं फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से गीत। गीत के बोल है ऐसे ना मुझे तुम देखो। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने। तो आइए सुनते हैं इन सभी का फरमाइशी गीत।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है धनवारी तेलीवाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोतागण हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बेटी बेटे का गीत। गीत के बोल हैं, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती। इस गीत को अपनी मधुर आवाज से संवारा है मोहम्मद रफी साहब ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

चलिए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो हमारे पास आई है मुंबई से। भेजने वाले श्रोतागण है मिट्टू, पूनम, राशि, सुनीता, किरण, सुजीत और शानू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मंजिल का गीत। गीत के बोल हैं रिमझिम गिरे सावन। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये प्यारा सा गीत।

0: ये था आज की फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
1: मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है,

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: नब्बे अशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
4: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए मोहम्मद अजीज के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आप सभी का स्वागत अभिनंदन आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है राम राम हरियाणा, जो आप सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन 4 बजे से 5 बजे तक आप देखते हैं, सुनते हैं हमारे सामुदायिक रेडियोज पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और अम्बाला से मैं आपसे रूबरू हूं। और आज है 8 जुलाई 2026 बुधवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष अष्टमी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय हुआ है 5:27 पर और सूर्य अस्त होगा

0: स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और कुलदीप सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं आज इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं काफी दिन एब्सेंट रहा और आगे भी एब्सेंट रहूंगा। मैं छुट्टी पहले ही लेना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि आउटस्टेशन भी आपके साथ जुड़ता रहूंगा, जहां जहां संभव होगा, जहां पॉसिबल होगा, जहां इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होगी। आज तो मैं स्टूडियो में हूं और आज हम लाइव है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। सर वीरेंद्र सर, आपका स्वागत और अभिनंदन, माइक आपकी ओर।
1: जी बहुत धन्यवाद। मेरा ऑडियो मिल रहा है क्या सबको?
0: जी
1: प्रीतम जी तक मैं पहुंच रहा हूँ।
2: हाँ सर, नारनौल तक जा रहे हो सर?
1: अच्छा, नारनौल तक जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो राम राम हरियाणा के इस मंच पर मैं एक बार फिर से भारत सोपुरी जी को कुछ दिन के अंतराल के बाद निहार कर, देख कर, पाकर उत्फुल्ल हूँ, आनंद में हूँ। और प्रीतम जी तो बिल्कुल बिना नागा के हमारी इस पंचायत के अभिन्न अंग और धुरी बनकर रहते ही हैं। प्रीतम जी को भी राम राम। आज के जो मेहमान सरपंच हैं कुलदीप सैनी जी, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और रेडियो ग्रामोदय, FM भारती, अपना रेडियो की जो टीम हमारे साथ जुड़ गई है, और उधर दूर नारनौल में, महेंद्रगढ़ में रेडियो अरावली, वो भी हमारी हमारे इस मंच का हिस्सा बन चुके हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भारत जी, आपको सच में मिस किया भाई, बहुत। आप गायब होते हैं तो फिर यूं लगता है कि इनकम्प्लीट सा हो गया मामला। तो कोशिश किया करें कहीं से भी आप जुड़ें, जब वीडियो पर जुड़ना संभव ना हो तो फोन पर आप हमारे साथ लैंडलाइन पर ही कुछ देर के लिए जुड़ जाया करें, स्टूडियो के नंबर पर।
0: नहीं, मैं कल भी जुड़ा था पर शायद मुझे जोड़ा नहीं गया था। पहले तो एक बार जोड़ा गया था, मुझे बाहर जाना पड़ा, उसके बाद जब दोबारा आया तो फिर मुझे जोड़ा नहीं गया, शायद सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो मैंने वीडियो भी 2-3 बार ऑन किया था। खैर ऐसी कोई बात नहीं है,
1: मैं कल ये समस्या भी थी, कल हमारे पास सौरभ ने
2: फाइन तो लगाया।
0: फाइन देने के लिए तैयार,
1: ये ठीक है।
0: फाइन देने के लिए हम तैयार हैं और हमारा मकसद है कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने प्रदेश को, खास करके अपने गांव को हम सही दिशा पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और हम उनसे बात करें। अगर कुछ कमी है उसकी भी बात करेंगे और अगर उन्होंने कुछ उन्नत कार्य किया है उसको भी हम रेडियो के माध्यम से सभी हरियाणा तक पहुंचाएं, ये हमारा लक्ष्य है। जी
1: हम करना क्या चाहते हैं फिर से मैं बताऊंगा, जो भारत जी ने कहा उसी बात को विस्तार देना चाहता हूं। राम राम हरियाणा के माध्यम से हम हरियाणा के अलग अलग सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को एक मंच पर लेकर आए हैं और हम सब का ये संगम, ये मंच बनाने का उद्देश्य वही है जो भारत जी ने कहा है। एक, हम हरियाणा के ग्रामीण अंचल से और गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं, हम अपनी पंचायतों से जुड़ना चाहते हैं, हम वहां के अनूठे नेतृत्व से जुड़ना चाहते हैं, कोई लीक से हटके बढ़िया काम अगर कर रहे हैं हम चाहते हैं कि उनकी चर्चा हो, जिक्र हो, और जिक्र के साथ हम फिक्र भी करना चाहते हैं, फिक्र हम उनका करना चाहते हैं, उनकी करना चाहते हैं जहां कोई समस्याएं उलझी पड़ी हैं, किसी काम की गरारी अटकी हुई है, कहीं कोई ऐसा मसला है जिसका रास्ता नहीं मिल रहा, समाधान नहीं मिल रहा, डेड एंड आ गया है, या किसी को लग रहा है कि यार कोई मेरी सुन ही नहीं रहा, सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे भी कुछ मामले अगर वो हमारे संज्ञान में आते हैं इस कार्यक्रम में तो हम उन्हें सुलटाने का प्रयास करते हैं। अभी 2 दिन पहले एक गांव के सरपंच हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें केवल एक कमरा शेष बचा है, कमरे तो 3 और हैं लेकिन वो तीनों बच्चों को बिठाने पढ़ाने लायक है नहीं, खतरा है, उनमें बिठाएंगे तो कोई हादसा कभी भी हो सकता है। और सरपंच को ये लग रहा था कि साहब किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, हमें तो कमरे हमें मिलने चाहिए। तो हम लोगों ने राम राम हरियाणा के मंच पर जब ये विषय आया तो वहां के जो खंड शिक्षा अधिकारी थे उनसे मैंने स्वयं बात की, गुरविंदर सिंह जी ने मुझे उनके साथ कनेक्ट किया और पहली बार तो उन्होंने कहा कि सर मेरे ख्याल से तो वहां पर्याप्त कमरे हैं। मैंने कहा जमीन

0: धरातल पे जाके देखो, ख्याल से तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा, सर मुझे एक दिन का मौका दीजिए, मैं मौके पर जाकर स्थिति की समीक्षा करके और अपडेट दूंगा। और कल फिर उन्होंने अपडेट भी दिया। अपडेट ये था कि अब वहां पर अतिरिक्त क्लासरूम कक्षा कक्ष बनाने का एस्टिमेट बनाकर अथॉरिटीज को भेज दिया गया है
1: जी।
0: तो इस तरह के छोटे छोटे कहीं कोई मसले हैं जिनका संबंध गांव ग्रामीण समुदाय के कल्याण से, उन पर हम बात करते हैं। हम अच्छे काम करने वालों की प्रशंसा खूब करते हैं। कल एक युवा महिला सरपंच हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत कम आयु में, जिनको गांव की चौधर करने का अवसर पंचायती राज में 50% का जो आरक्षण हो गया कि आधी आधी पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति की सदस्य और जिला परिषद के सदस्य और प्रधान वो महिला बनेंगी, जब ये कानून आ गया तो उनको मौका मिला। उनका कहना था, आरती यादव शायद उनका नाम था, प्रीतम जी यही था नाम?
2: हाँ यही नाम था सर।
0: तो आरती यादव का ये कहना था कि ना तो मेरा सरपंच बनने का सपना था, ना परिवार वालों के साथ गांव वाले खड़े थे कि इस लड़की को सरपंच बनाई देना चाहिए। लोगों ने ये भी कहा कि अरे इसकी तो शादी हो जाएगी, ये तो ब्याह के चली जाएगी, या ये भी कहा अरे इसको तैयारी करने दो यार नौकरी वोकरी की। तो उस सारे इफ और बट्स के बीच में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, वो हार गई, लेकिन हौसला नहीं हारा। संयोग दुर्योग से वहां उपचुनाव हुआ 6 महीने बाद, और उस गांव को एक युवा नेतृत्व, एक युवा सरपंच वो मिले और बहुत बढ़िया काम कर रही है, कई सारी अच्छी चीजें उन्होंने बताई। तो ऐसे लोगों, ऐसे व्यक्तित्वों को उनका अभिनंदन करने का, उनको प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में सारे हरियाणा के सामने रखने का भी एक ये मंच हमारे सामने है। दोस्तों हमें इस कार्यक्रम में आनंद तब आता है, भरत जी, जी भरत जी।
1: सर पीछे एक दिन हम शो कर रहे थे, उस समय आपको जाना पड़ा था, आप चले गए थे, तो एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि हमारे पास यहाँ पे एक कॉल आया था अंबाला छावनी से, श्याम नगर से, जो स्टूडियो के विसिनिटी में है, उषा जी का कॉल आया था। उनका पहली कंप्लेंट उनकी ये थी कि जब हमारे पास यहाँ लाइट जाती है तो बिजली वाले जो कंप्लेंट नंबर है वो हमारा फोन पिक नहीं करते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि जब म्यूनिसिपलिटी पे हम कॉल करते हैं वो भी हमारा फोन नहीं उठाते हैं। तो मैंने उनसे ये आग्रह किया था कि जो आपके MC है आप उनसे क्यों नहीं बात करते हैं, क्योंकि MC जो है वो पुल है आपके और म्यूनिसिपलिटी के बीच में, अगर वो कॉल नहीं उठाते। उन्होंने कहा नहीं वो तो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो तो बढ़िया काम करते हैं, तो मगर म्यूनिसिपलिटी वाले वो नहीं उठाते हैं। मैंने उनका नंबर अर्जित किया है, हम कोशिश करेंगे कि अगले दिन हम उन्हें इस शो में जोड़ेंगे और उनसे ही पूछेंगे क्या तरीका होना चाहिए कि जब एक आम व्यक्ति, चाहे वो गाँव में रहता है चाहे कस्बे में रहता है, जब म्यूनिसिपलिटी अथॉरिटीज या बिजली डिपार्टमेंट कॉल नहीं उठाता, क्योंकि वो ओल्ड लेडी है तो उनके घर में पिछले 8 घंटे से लाइट नहीं थी जब उन्होंने कॉल किया था, तो वो कह रहे कि फोन नहीं उठाते हैं। तो मैंने उनको ये कहा था कि आपकी बात हम पहुंचाएंगे वीरेंद्र सर के पास, क्योंकि वो इस समय हमें, हमारे पास इस समय शो में नहीं है, उनको जाना पड़ा, वो चले गए जब आप अपने ऑफिस से कनेक्ट हुए थे। तो मैं आप तक ये बात इसलिए पहुंचाना चाह रहा था। तो ये बताएं कि इसका क्या जरिया हो सकता है, ये भी आप बताएं, हम आज के मेहमान से भी बात करेंगे। धन्यवाद सर।
0: दो दो अलग अलग पक्ष हैं
1: जी।
0: कुछ सेवाएं नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम नागरिकों को देते हैं
1: जी,
0: उनमें बिजली नहीं है।
1: हाँ ना, बिजली तो अलग थी।
0: बिजली की जो आपूर्ति
1: जी, दो पॉइंट्स अलग
0: जो थी। बिजली की आपूर्ति है, हाँ बिजली की जो आपूर्ति है वो बिजली वितरण कंपनियां हमारी हैं वो करती हैं
1: जी।
0: तो हमारे पास दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम नाम से दो कॉरपोरेशंस हैं जिनके हिस्से में, जिनके बीच में हरियाणा के सभी जिलों को बांटा गया है। तो सब दोनों ही कंपनियों ने अपने टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं जहां आप बिजली की शिकायत कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि वहां स्थानीय जो सब स्टेशन वगैरह हैं उनके भी कुछ नंबर रहते हैं, वहां पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन इस वरिष्ठ नागरिक को, जो एक बुजुर्ग महिला है आपने बताया जो हमारे कार्यक्रम में जुड़ी थी, उनको वो जो दिक्कत आई, एक बार भारत जी आप संभव हो तो उनसे फोन पर बात करके उस समस्या को रिकॉर्ड कर लीजिएगा,
1: जी
0: हमारे लाइव में रिकॉर्डेड होगी तो हम उससे वहां से भी ले लेंगे। और वहां पर बिजली निगम के जो कम से कम एसडीओ स्तर के जो अधिकारी हैं या उससे ऊपर के एक्सीएन भी हो सकते हैं, अधीक्षण अभियंता भी हो सकते हैं, हम अंबाला वालों को ये एक दिन लाइन पे लेके पूछेंगे कि साहब आपको लाइन पे लाने का तरीका क्या है।
1: जी
0: ऐसा होता है क्या कि फोन ही ना उठाएं?
1: जी
0: फोन ना उठाना और आठ आठ घंटे तक, देखिए बिजली तो 8 घंटे कट सकती है किसी कारण से,
1: हाँ,
0: कहीं कोई लाइन
1: हो
0: में इतनी बड़ी दिक्कत हो जाए, हाँ। मेंटेनेंस का इश्यू आ जाए, कोई क्राइसिस भी कभी कभी आ सकता है, लेकिन कोई रिस्पोंड ना करे, फोन ना उठाए, ये गलत है।
1: जी
0: जहां तक मेरी जानकारी है जो उनका रिस्पोंड करने का एक सिस्टम है उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, लेकिन एक बार अंबाला वालों से पूछेंगे कि ऐसा क्यों कहना पड़ा एक हमारी नागरिक को कि भाई 8 घंटे किसी ने मेरी सुनी नहीं।
1: जी जी
0: हम एक रिस्पॉन्सिव तंत्र विकसित करने में कामयाब रहे हैं, टेक्नोलॉजी का खूब जमकर उपयोग होता है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम नागरिकों के जीवन को सुखमय बनाने में लगे ही हैं। जो बात मैं कह रहा था भारत जी जब आपकी उंगली उठी वो ये थी कि इस कार्यक्रम का जो आनंद है ना, मजा है, श्रोताओं की कॉल्स में है।
1: जी
0: इस कार्यक्रम के सजीव और सदुपयोगी होने का प्रमाण हमारे श्रोताओं के फोन हैं।
1: जी
0: और कभी कभी हमारे कारण से हम उनको नहीं सुन पाते, कभी कभी हमारा तंत्र गड़बड़ हो सकता है। तो दो चीजें सब मित्र दर्ज कर लें,
1: जी
0: सब श्रोता सब दर्शक, एक हमारा स्थायी स्टूडियो का नंबर जिस पर पहले प्रयास किया जाना चाहिए हमसे जुड़ने या बात करने के लिए, वो नंबर है 88 16 904 904। जब भी आपके मन में कोई विचार पैदा हो कि रेडियो के राम राम हरियाणा मंच पर जाना चाहिए, हमारे सब रेडियो स्टेशनों पर जाना चाहिए, तो खटाक से इस नंबर पर आप फोन लगाएं। हमारा ये जो कॉल है ये रेडियो ग्रामोदय के माध्यम से सीधे हमारे राम राम हरियाणा के मंच पर आएगा और यहाँ पर भारत जी सुनेंगे या प्रीतम जी सुनेंगे, मैं सुनूंगा, कोई भी हम में से आपके सवाल आपके फोन को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। दूसरा कभी कभी कोई कारण हो सकता है, मान लीजिए रेडियो ग्रामोदय के स्टूडियो में कोई बिजली की दिक्कत हो, कोई और तकनीकी दिक्कत आ गई, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप फोन नहीं कर सकते। तो मैंने तो अपना निजी फोन नंबर भी सब श्रोताओं के लिए खुला किया हुआ है, मैं अभी दोहरा रहा हूं, सभी श्रोता दर्शक मित्र उसको दर्ज कर सकते हैं। जब स्टूडियो का नंबर अर्थात 88 16 904 904 न मिले तो मेरे निजी नंबर पर आप कॉल करेंगे तो मैं ठा से आपको कनेक्ट कर दूंगा राम राम हरियाणा पर, और मेरा जो निजी नंबर है वो कतई सार्वजनिक पहले से भी है, फिर से दोहराता हूँ, 98 126 00 387। दोहरा देता हूँ एक बार और फिर एक बार प्रीतम जी उसको दोहरा देंगे। जब स्टूडियो का नंबर अर्थात 88 16 904 904 उस पर जवाब न मिले तभी आप मेरे नंबर पर फोन कर सकते हैं, और मेरा नंबर है 98 126 00 387 98 126 00 387। एक बार प्रीतम जी इस नंबर को दोहरा देंगे और फिर हम जोड़ेंगे आज के मेहमान कुलदीप जी को, उनसे जानेंगे कौन सा है उनका गांव, क्या किए हैं उन्होंने अच्छे काम, और कौन से हैं वो काम जो उन्होंने जिनको अपना मुकाम माना है इस कार्यकाल के लिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा, सवा साल 1.5 साल बचा है, चुनाव कुछ अर्ली भी हो सकते हैं पंचायतों के, ये भी चर्चा और विमर्श चल रहा है। प्रीतम जी नंबर ये, फिर हम आगे बढ़ेंगे और सरपंच से बात करेंगे, कुलदीप सैनी जी से, हमारे भारत सोपोरी जी, मैं साथ रहूंगा ही। जी
2: बताओ, हमारा स्टूडियो नंबर है वो नंबर है 88 16 904 904। अगर वो नंबर नहीं लग रहा है तो फिर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का नंबर है, वो नंबर है 98 126 00 387।
1: जी एक बार
2: नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।
1: एक बार मैं भी
2: एक छोटी सी और एक
1: जी जी मैं भी रिवीजन करूंगा, आप अपनी मैं भी रिवीजन करूंगा, आप अपनी बात पूरी कर दीजिए प्लीज।
2: सर वीरेंद्र जी, जो ये टोल फ्री नंबरों की बात चल रही थी तो मैं एक आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हरियाणा सरकार ने एक सीनियर सिटीजन, पूरे भारत सरकार का एक सीनियर सिटीजन नंबर है 1 4 5 6 7, यही है ना भारत जी?
1: जी जी
2: ये नंबर बंद पड़ा है सर, सीनियर सिटीजन इसको कृपया चलवाने का कोशिश करिए सर।
0: मैं आज ही चेक करूंगा और किस स्तर पर कहां गड़बड़ है उसको दुरुस्त कराने का प्रयास करेंगे।
1: जी धन्यवाद। मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले जरूर कहना चाहूंगा सभी श्रोताओं को कि वो कॉल करें हमारे स्टूडियो के नंबर पर 8816-904-904। अगर एक किसी कारणवश इस नंबर पर आप बात नहीं कर पाते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी के नंबर पर जो है 9812600387। जी सर जो मेरे पास एमसी का नंबर है अगर सौरभ जी वहां पे हो तो हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं नंबर भेज सकता हूं सौरभ जी को।
0: नंबर तो आप भेज ही दीजिए लेकिन तब तक हम कुलदीप जी के जी। साथ उनके गांव की बात शुरू कर सकते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी,
0: और वो आपने शुरू करना है मैं आपका साथ दूंगा।
1: जी धन्यवाद जी। धन्यवाद
3: सर। नमस्कार जी।
0: नमस्ते कुलदीप जी।
3: सर मैं कुलदीप सरपंच ग्राम पंचायत बेड़ी खंड नारायणगढ़ डिस्ट्रिक्ट अम्बाला।
1: जी
0: अम्बाला जिले के नारायणगढ़ खंड के हैं तो ये तो आपके जिले के हो गए भारत जी। जरा बात इन्हीं से आपको ज्यादा।
1: जी कुलदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और जब हम अम्बाला की बात करते हैं तो एक एक इमेज बनती है हर एक इंसान के मन में कि अम्बाला हर एक कार्य में आगे है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप और मैं आज अम्बाला की बात रखेंगे जो आपने अच्छे कार्य करे होंगे जिस आधार पर आप आगे भी लोगों की सेवा करेंगे। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं आप विस्तार में अपनी बात बताएं क्योंकि आज आप कार्यक्रम के मेहमान हैं तो आप विस्तार से अपनी बात बताएं आपने इस कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं और क्या कोई ऐसा काम भी किया है कि जो आज तक नहीं हुआ हो तो आप विस्तार में बताएं हम सुनेंगे जहां जरूरत होगी वहां आपसे प्रश्न करेंगे। जी कुलदीप जी।
3: सर एक बार दोबारा से नेट कट गया था रेंज कट गई थी।
1: कोई बात जी।
3: हाँ जी सर पूछिए
1: जी। आप अपने गांव के बारे में बताएं आपका गांव कहाँ पर है क्या स्थिति है गांव की कितना खुशहाल गांव है किस तरीके से आप अपनी जो चौधर है वहां पर करते हैं किस तरीके से आप अपने गांव का विवरण दे दीजिए उसके बाद हम आपसे प्रश्न करेंगे। जी
3: जी मैं कुलदीप सरपंच ब्लॉक नारायणगढ़ से हूँ। मेरा गांव ब्रेड़ी खुर्द है नारायणगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर 9-10 किलोमीटर के दूरी पे है
1: जी।
3: और मेरा गांव बहुत साफ सुथरा गांव है जी। और गांव के मूलभूत सभी जो भी जरूरतें होती हैं वो लगभग हमने पूरी कर रखी हैं। जो बच्चे हैं वो करने के लिए लगे हुए हैं। बाकी मैं काम बता देता हूँ जो मैंने करवाया गांव में।
0: खुल के बताओ ना फिर न्यू शर्मांदे शर्मांदे से क्यों बात करो सरपंच साहब जमा खुल कर खिल के बताओ भाई जब से आपके हाथ में चौधर आई है गांव की आपने केक के कराया
3: जी जी जी
2: कौन से गुल खिला दिए वो बता दो विकास के
0: कौन से गुल खिलाए फिर हरियाणा में थोड़ा सा नेगेटिव सा लगे पर न्यू भी कह रहे केक के पत्थर फोड़े पता चलना चाहिए आज हरियाणा ने
3: बिल्कुल पता चलना चाहिए बिल्कुल सही बात है। गांव की मेन समस्याएं होती हैं जी जो भी हैं जैसे सबसे पहले तो गांव में बैठने की जगह होनी चाहिए कि 10 आदमी कहीं बैठा सके हम वो चीजें नहीं थी वो हमने की। सामुदायिक भवन नहीं था वो बना के कंप्लीट किया। ग्राम सचिवालय माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने डिमांड की थी उन्होंने वो भी दे दिया हमारा वो भी बन के तैयार हो गया है। उसके अलावा जिस तरह शादी ब्याह होते हैं गांव में उसके लिए लोहे के शेड वगैरह हमने आयरन शेड बड़े बड़े शेड डलवा दिए हैं कि बरसात का मौसम हो कोई भी मौसम हो किसी तरह का भी कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़ेगी किसी को। और दूसरा बच्चों के लिए खेलना ग्राउंड बनाया टूर्नामेंट वगैरह हम करवाते रहते हैं 3-4-5 महीने के बाद टूर्नामेंट करवाते रहते हैं बच्चों को अवेयर करते हैं खेलों की तरफ बढ़े ताकि नशे से दूर रहें।
2: सरपंच जी एक बार रुकिए कॉल आई
3: जी सर।
2: हेलो
4: हेलो सर नमस्कार।
1: नमस्कार
2: नमस्कार जी
1: कौन बोल रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं?
4: सर मैं नीलोखेड़ी से बात कर रहा हूँ
1: जी। नाम
4: मेरा सर सरपंच साहब एक सवाल है सर
1: जी
4: कि जो अभी अभी सर जो घटना हुई है अम्बाला के किसी गांव में बोरवेल में एक बच्चा गिर गया था
1: जी जी
4: तो उस घटना के बाद सरपंच साहब ने अपने गाँव में उस घटना को देखते हुए क्या सेफ्टी के लिए क्या वहाँ पे अपने गांव में कुछ एप्लीकेबल किया है उस घटना को देखते,
1: आपका
4: कि उनके गांव में घटना ना हो सके।
1: जी, आपका नाम?
4: मेरा नाम सौरभ है।
1: सौरभ, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आज के हमारे मेहमान से। सरपंच जी, आप बताइए कि आप किस तरीके से इस बात को लेते हैं और किस तरीके से आप अपने गांव में लोगों को इस बारे में सचेत करते हैं, और क्या आप लोगों ने कार्रवाई की ताकि आगे ऐसा हादसा ना हो? जी
3: सर मैं बात करूं
1: जी आपसे ही पूछ रहे हैं। जो
3: जी।
1: जो कॉल आई है
3: जैसे जी
1: वो जो कॉल आई है वो प्रश्न आपसे ही किया गया। ये कहा गया कि जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे एक गांव में एक बच्चे
3: जी
1: की मृत्यु हो गई, उसके बारे में आपने अपने गांव में।
3: बिल्कुल
1: जी जी
3: लंबा
1: प्लीज प्लीज बताइए प्लीज।
3: जी। जैसे कि गांव में कोई किसी के पास भी कोई बोर फेल फेल फेल होता है जमींदार के पास,
1: जी जी
3: उसको बहुत ज्यादातर लोग उसको ढकते नहीं ऊपर से, लेकिन ये इसी कारण ये अनहोनी हुई है वहां पे कि किसी जिमीदार के बोर में बच्चा गिरा और वहां यह घटना घटी है। तो
1: जी
3: हमने ये वैसे तो तकरीबन हमारा खुद का बोर भी हमने खुद का भी बंद किया हुआ ऊपर से बढ़िया तरीके से,
1: जी
3: और जो हमारा एक पब्लिक हेल्थ का बोर था वो भी हमने ऊपर से अच्छे से बंद करके, हमने उसमें बारिश वाला पानी है जो ड्रेन वाटर वाला वो डाल रखा है जी,
1: जी
3: हमने वो बंद किया उसको पीछे, और लोगों को भी अवेयर करते हैं इसलिए कि किसी का भी अगर बोर है ऐसा उसको अपने को बंद रखें ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे कि किसी की जान को कोई नुकसान पहुंचे। और जैसे कि हमारे जो पहले हाँ
0: इस सवाल को
3: जी
0: लेके सरपंच साहब, मेरे मन में
3: जी
0: फर्दर मैं आपसे प्रैक्टिकल बात पूछना चाहता हूं।
3: जी
0: पहली ऐसी बड़ी घटना जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी चर्चा हुई थी, प्रिंस नाम का बालक
1: जी जी
0: कुरुक्षेत्र जिले में एक
3: जी
0: बोरवेल में अनेक वर्ष पहले गिरा था। उस घटना के
3: जी
0: बाद
3: जी
0: भी कई सारी घटनाएं हुई, बच्चे आ, आ, आ, बिना ढके हुए असुरक्षित बोरवेल में गिर गए और
3: जी
0: कोई बचा, किसी को नहीं बचाया जा सका अंबाला वाले इस बालक की तरह।
1: जी जी
0: तो कोर्ट के निर्देश भी हैं, सरकार के निर्देश भी हैं कि इनको ढका जाना चाहिए। अब
3: ढका जाना चाहिए बिल्कुल
0: ढका जाना चाहिए, आपने कहा कि आप लोगों को जागरूक करते हैं,
3: जी
0: मुझे आप सही में ये बताइए कि आपने, छोड़ दीजिए और गांवों का जिक्र,
3: जी
0: आपके अपने गांव में
3: जी
0: बोरवेल बिना ढके न हो न रहे, इसके लिए हाल ही में क्या गतिविधि की, कैसे जगा
3: सर
0: रहे
3: जी
0: हैं आप
3: मेरे
0: लोगों
3: गांव
0: को?
3: सर जी मेरे गांव में तो एक बोर था पब्लिक हेल्थ का जो खुला था वो हमने बंद कर दिया, बाकी वैसा कोई भी ऐसा बोर नहीं है जो मेरे गांव में खुला है, जो थे वो हमने बंद करवा दिए हैं सरपंच
0: पब्लिक हेल्थ वाला तो
3: साहब
0: आपने, पब्लिक हेल्थ वाला आपने
3: जी।
0: मैनेज कर लिया सरपंच साहब। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो बोरवेल था जिसमें ये बच्चा गिरा अंबाला जिले में, ये तो उनके
3: जी
0: अपने खेत
3: बिल्कुल
0: का था।
3: हाँ अपने खेत का भाई हाँ जी
0: उसके
3: अपने
0: अपने
3: खेत का
0: खेत
3: जी लोगों
0: का
3: को अवेयर किया हुआ
0: असुरक्षित
3: है जी
0: बोरवेल घर के चिराग को नील गया, तो
3: हाँ जी
0: लोगों के अपने
3: बिल्कुल
0: खेतों में
3: बिल्कुल
0: ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया है आपने या क्या करने की सोचते हो?
3: सर जी हमने सभी लोगों को बोल रखा है कि किसी का भी बोर कोई भी खुला ना रहे कि कोई ऐसी
0: कैसे
3: घटना
0: बोला
3: ना घटे
0: आपने? मैं ये समझ रहा हूं ये बात लोगों तक पहुंचाई
3: जी।
0: कैसे है आपने, और भी लोग सीख लेंगे जान लेंगे,
3: हमने
0: और
3: सर
0: अगर अब
3: मेरे
0: तक
3: पास
0: कम पहुंचाई है तो आगे कैसे पहुंचाएंगे इस बात को?
3: जी
0: जी
3: सर हमने चौकीदार से इस बात की सलाह भी दिलवा दी थी गाँव में, मतलब
0: कब?
3: जिस दिन ये घटना घटने के टाइम भी हमने दोबारा से फिर भी इसको रिपीट कराया था। वैसे कोई भी बोर मेरे गांव में खाली नहीं है, ऐसा हम खुद ध्यान रखते हैं इस चीज का। मेरे घर घर के मतलब गांव में जो भी नाले थे ना हमने वो भी सीवरेज टाइप में जो गहरे थे उनको बड़े पाइप डाल करके हमने उनको भी बंद किया ताकि कोई बच्चा छोटा बच्चा आगे पीछे ना गिर जाए इनमें, इसके ऊपर ध्यान ना जाए किसी का, और बच्चा गिर जाए नाले से निकल नहीं सकता, हमने उसमें पाइप डाल करके सीवरेज टाइप उसके मेन होल बना करके उनको बंद किया हुआ है कि कोई ऐसी अनहोनी
0: चलिए,
3: ना हो।
0: तो दोस्तों ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जितने मित्र इस समय देख रहे हैं, को सरपंच हो ना हो अपने गांव के, एक काम तो सबको करना ही चाहिए।
3: जी
0: जितने भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, वितस्ता से लेके और अरावली तक, नदी से लेके और पहाड़
1: पहाड़
0: तक,
1: तक
0: वितस्ता नदियां है,
1: जी
0: अरावली
3: जी जी
0: पहाड़ है,
1: जी
0: जहां कहीं बोरवेल है और अभी हाल नहीं भी है, हरियाणा के हर गांव के हर सरपंच को मुनादी करवानी चाहिए अपने चौकीदार के माध्यम से। गांव
3: जी
0: के मंदिर, गुरुद्वारे, जो भी धर्म स्थल या सार्वजनिक स्थल है जहां पर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं, वहां से घोषणा करके लोगों को जगाना चाहिए। और ये काम अगर अगले एक महीने में 4 बार भी कर दिया जाए तो ज्यादा नहीं होगा, कुछ नहीं लगता उसमें लंबा चौड़ा, लेकिन लोगों को जगाना पड़ेगा। फिर सरपंच साहब एक काम और करना चाहिए मेरे समझ में जो आता है, आपने लोगों को कहा ढक दो, आपने मुनादी भी करा दी, ढको भाई, संभालो भाई, उसके बावजूद भी कुछ लोग लापरवाह हो सकते हैं, तो कभी कभार पंचायत की टीम औचक निरीक्षण भी कर ले, कुछ खेतों में निकल जाए, देख ही ले संभावनाएं जहां बिना ढके बोरवेल होने की है, तो फिर आपको आइडिया भी लग जाएगा कि लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं, लोग ढक भी रहे हैं कि नहीं। प्रीतम जी कुछ कह रहे थे इस विषय पर।
2: मैं यही पूछ रहा था सर, आपने जो सवाल किया कि सरपंच साहब कह रहे हैं जो इनका पानी वाला था वो बोरवेल ढक रखा है, बाकी ढक रखे, लेकिन जो ये घटना हुई ये खेत में हुई, क्या खेत के जमींदारों ने भी ऐसा बंद कर रखे हैं? क्योंकि आजकल खेतों में धान की रुपाई से पहले लोग बाग एक खेत में दो दो तीन तीन बोर कर लेते हैं और एक आधा खुला छोड़ देते हैं, जिससे ऐसी घटनाएं होती है।
3: जी जी,
2: तो सरपंच साहब ने अभी
3: हमने सर इसके लिए मुनादी करा दी थी गाँव में।
2: सरपंच साहब हम हर चीज कोई घटना होने के बाद करते हैं, आप आगे से हर सरपंच को ख्याल रखना चाहिए कि ये चीजें हर समय होती रहती हैं और समय समय पे जाके कहीं पे भी अगर ऐसी जानकारी मिले तो पूरी पंचायत ने जाके उस किसान को बोल के उसको बंद करवाना चाहिए।
3: जी जी,
0: चलिए महत्वपूर्ण बात थी, बहुत अच्छा सवाल हमारे श्रोता ने पूछा। और इस तरह का कोई सवाल दोस्तों किसी भी श्रोता के मन में, चाहे अंबाला में, चाहे दादरी में, और चाहे महेंद्रगढ़ में इस समय आ रहा हो, या पेहोवा में एफएम भारती के श्रोता हमको सुन रहे हैं, जिसके मन में इस तरह का कोई सवाल हो, रेडियो ग्रामोदय के श्रोता भी उसमें शामिल हैं, तो आप ऐसा कोई सवाल और सुझाव, दोनों, केवल सवाल नहीं सुझाव भी, आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर फोन करके कह सकते हैं। भारत जी कुछ कह रहे हैं।
1: इसी विषय पर मैंने कुछ रिसर्च किया था और इसमें ये बताया जाता कि गैर इरादतन हत्या का मामला ये दर्ज हो सकता है। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पलेबल होमसाइड के तहत मुकदमा दायर किया जा सकता है। अगर हम ये जानकारी गांवों में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं, और मैं आज आप सभी को इस शो में कह रहा हूं कि इसका एक वॉइस नोट मैं तैयार करूंगा, आज कल से हम रेडियो पर भी इसका अनाउंसमेंट करेंगे कि आसपास के जितने भी गांव हैं, तो जो जिम्मेदारी हम सबकी है, हमें BNS धारा के अंतर्गत हमें हमारे ऊपर ये मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी ली जानी चाहिए क्योंकि एक जान बहुत कीमती है और एक बच्चे को जिसको ये नहीं पता है कि मुझे पैर कहाँ रखना चाहिए कहाँ नहीं रखना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आज हमारे पास ये आया जिसके हम बात कर रहे हैं। जी आगे आगे सर।
0: भारत जी जो वॉइस नोट आप तैयार करें
1: जी
0: वो केवल वितस्ता के लिए उपयोगी हो ऐसा मत बनाइएगा, साझा सा बना दीजिएगा
1: जी,
0: ताकि आपकी आवाज हम अरावली पर भी गुजा दें और अपना रेडियो पर भी और एफएम भारती सबके साथ साझा कर दें और सब लोग उसका उपयोग कर पाएं
1: जी।
0: ऐसे कुछ जन जागृति वाले वॉइस नोट्स कह लीजिए, संदेश कह लीजिए, वो हमारे यहाँ बनते ही रहने चाहिए और वो हम इस शो में साझा करते हैं। श्रोता है मुझे लगता है कॉल
1: जी, कॉल
0: हाँ मुझे स्टूडियो में घंटी सुनाई दे रही।
1: हेलो हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कौन बोल, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
5: मैं जी महेश कुमार बोल रहा हूँ जी, डुडेवाला नंद कंतर के दादरी हरियाणा से।
1: जी जी जी बताइए महेश जी।
5: हाँ जी, हमारे भी एक गाँव तो समस्या बताई थी जी, वो अपने फिरने की, अभी तक कोई उसका वो नहीं हुआ जी समाधान, न तो कोई पैमाशा ही है न कोई गांव में ग्राम सभा हुई है जी।
1: जी विंदर सर,
0: इसमें इंतजार ही एक विकल्प है और आपके इस संकट के समाधान होने तक हम प्रयास करते रहेंगे। अगले एक आध दो दिन में, गुरविंदर सिंह जी आज है नहीं हमारे साथ, उनके परिवार में किसी की सर्जरी आज होनी थी, तो भाई महेश जी जितने चिंतित आप उससे ज्यादा चिंतित हम, और आपकी फिरने की पैमाइश जल्दी से हो और फिर उस पर अगली कार्रवाई हो, हम प्रयास करते रहेंगे, संबंधित अधिकारियों को एक आध दिन में जोड़ेंगे हम कि भाई आखिरकार माजरा क्या है।
5: ठीक है, करना जी थोड़ा जल्दी करके, बारिश का मौसम है जी थोड़ा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमारा बस चलेगा, और मेरा बस चले तो मैं अभी डूडी वाला आ जाऊं, और जो है ना वो नंद बाबा की जय बोलते हुए, और मैं फीता ढा लूं जो मेरा फीता चलता हो तो। मैं कह रहा था मतलब मेरा मारे अपीता काम नहीं आवे, नहीं तो मैं जाते ही लग तो नाप तोल के आप तो बता देता भाई, आड़े तले के आड़े तक थारी फिरनी है, या धर्मपाल की जगह आड़े खत्म होगी और सतपाल की आड़े तो शुरू होगी, ये काम मैं खुद कर देता। खैर बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है, और समाधान देंगे हम आपको, हम ही देंगे समाधान, और कोई दे ना दे, हम देंगे समाधान। राम राम हरियाणा के मंच से आपकी फिरनी का समाधान निकलेगा। कुलदीप सैनी जी, सबसे अच्छा काम क्या किया है, काम जिसकी संतुष्टि हो, तसल्ली हो, भाई हो तो कर दिया, मजा आ गया।
6: सर जी मैंने लोगों खेतों के रास्ते पक्के कर दिए अपने गांव के।
0: कितने रास्ते पक्के? कितने पक्के कराए रास्ते?
6: हमने 4-5 रास्ते पक्के कर दिए खेतों वाले,
0: खेतों के 4-5 रास्ते पक्के कर दिए। और इस पे सारे 4-5 पे लगभग कितना खर्चा आया होगा टोटल?
6: लगभग 70 लाख के आसपास आ गए।
0: और ये पैसा सरकार की योजना में से खर्च हुआ
6: ये सर, या नहीं सर? हाँ। ये पंचायत की इनकम है सर।
0: कितनी जमीन है आपके पास पंचायत में?
6: जमीन तो सर लगभग 158 एकड़ के आसपास है जी।
0: सेठ पंचायत तो फिर तो आप तगड़े।
2: मोटी पंचायत है
6: मेरे पास, तो जंगल था इसमें, हमने लकड़ी बेची थी। हाँ। सर इसमें सब काम विकास कार्य करवाए गाँव में।
0: चलिए, अपने संसाधनों से आपने गांव के खेतों वाले रास्ते पक्के कराए, इस बात की आपको संतुष्टि है। अच्छा, एक ऐसी चीज बता दीजिए जो अगले बचे हुए 1.5 साल में आप सोचते हो कि यो तो करवा के मानूंगा, चाहे मैंने मुख्यमंत्री के दौर जाकर बैठना पड़ी हो, और आपकी तो सुनेंगे भी नारायणगढ़ वाले।
6: जी जी जी सर, आने वाले मतलब 1.5 साल ही बचा, 1.5 भी नहीं बचा वैसे अभी, 1 साल मान लो आप, 1 साल के अंदर जैसे अपनी कोशिश है, मतलब एक दो जोड़ है, मतलब तालाब है अपने, उनको पौंड पौंड में बदलने की कोशिश है हमारी, कि उनको पौंड बदल करके उनका सौंदर्यकरण अच्छे से किया जाए, उनके चारों तरफ पेड़ वगैरह लगा करके, उनका थोड़ा जिससे कि लगे पार्क वगैरह बनाने की, अब थोड़ा ध्यान है गाँव में पार्क बने, जिससे बाहर से आने वाला बंदा देखे कि हाँ कुछ गाँव में हो रखा है।
0: चलिए बहुत बढ़िया, ये बात आपने ठीक कही। गांव में एक ग्राम गौरव पट नाम की चीज होती है, आपके बच रहे हैं कि नहीं?
6: जी बचा हुआ, बिल्कुल
0: साफ सुथरा है।
6: बिल्कुल साफ सुथरा है।
0: चलिए, उसकी एक तस्वीर खींच के आप हमारे साथ जरूर साझा करिएगा, उसकी स्थिति क्या है, हमें उसका अनुमान लग जाएगा। प्रीतम जी का कोई सवाल है तो प्रीतम जी पूछ लें, और
2: मेरा सवाल तो साफ सुथरा सर, हमारे जैसे ननकन डुड्डी वाला में फिरनी की प्रॉब्लम है, सरपंच साहब ने तो गांव खेतों का रास्ता बनवा दिया, क्या सरपंच साहब के पास भी ऐसी कोई शिकायत आई थी कि इनके गांव में भी फिरनी की समस्या थी, तो उसका समाधान कैसे करें सर, ये बता दे बस।
6: सर जी मैं एक बात और बताऊं, मैंने अब काम की बात आ रही थी ना, मेरा एक ऐसा गाँव है जिसमें बिना फोर्स के, बिना किसी मतलब अधिकारी को बुलाए, मैंने सबसे ज्यादा नजायज कब्जा अगर लोगों ने छुटवाया ना, कि प्यार के माध्यम से, वो एक ब्रेडी घुट पंचायत ऐसी है
1: जी, जी।
6: जिसने सबसे ज्यादा 2 से 3 एकड़ जो गांव के आसपास जमीन थी, किसी ने कुछ भी डाला होता, उनको प्यार से बोलना कि आपका गांव है, इसको साफ सुथरा रखेंगे आपके लिए, या मेरे खुद के लिए मैंने कुछ नहीं करना, आपका पैसा आपके ऊपर लगाना, आपके गाँव पे लगाना है। तो सबने बड़े प्यार से अपना सारा खाली करके दिया, और हमने सीएम साहब से भी कैसी एक ग्रांट मिली, हमने वो लगाई।
1: एक मिनट कुलदीप जी, एक कॉल आ रहा है, आपको रुकना पड़ेगा जी। हेलो हेलो,
7: नमस्कार सर।
1: नमस्कार ममता जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक?
7: ठीक है सर, बारिश का मजा ले रहे हैं, चाय पकौड़े खा रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया, यहाँ तो अंबाला में कोई बारिश नहीं हो रही है, खास करके छावनी में।
0: क्या और भाई साहब, भारत जी बरसात तो हो ही नहीं रही, पकोड़े भी नहीं मिल रहे हमें तो।
7: पानी भरा है, आगे देख सकते हो,
2: आज दादरी में बहुत अच्छी बारिश हुई है सर।
1: अच्छा, यहाँ छा बहुत हुई है। ममता जी क्या कहना चाहती हैं आज?
7: सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, इन्होंने काम अच्छे किए हैं और सर की वो करते हैं, तो फिर महिला और बच्चियों के लिए इन्होंने क्या किया?
1: जी सरपंच जी बताइए।
3: जी जी बिल्कुल सही क्वेश्चन किया मैंने।
7: क्या कर काम की व्यवस्था है, क्या स्कूल में जाती, कैसे जाती है बच्चियाँ?
3: जी जी जी
1: सरपंच जी, सरपंच जी एक मिनट, एक मिनट सरपंच जी एक मिनट, मैं आपको ये कहता हूँ कि जो ममता जी हमारे साथ चरखी दादरी से जुड़ती हैं, ये महिलाओं की अलमबरदार है, एक उर्दू शब्द है, जिसके हाथ में एक जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए क्या करती हैं। तो कृपया आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। जी
3: जी जी जी सर, जैसे हमारे गाँव के गाँव में खुद का स्कूल नहीं है, हमारे साथ ब्रेडी कला गांव पड़ता है, बिल्कुल साथ में ब्रेडी कला और साथ में। तो हमारे यहाँ बच्चियों को दिक्कत सबसे पहले क्या थी, हमारे यहाँ सेंटरिंग था स्कूल का, एग्जाम देने के लिए बाहर बाहर दूर दूर जाना पड़ता था उनको, लड़के तो कहीं भी जा सकते हैं लेकिन लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी हमारी ये। हमने सीएम साहब जी को बोल करके अपने गाँव में 10th और प्लस 2 का सेंटर बनवा दिया अपने गाँव में, स्कूल में ब्रेडी कला में। दोनों सरपंचों ने हमने मेहनत की, सीएम साहब से हम 5-10 बार मिले बीच बीच में, तो हमारा काम हो गया वो। उसके बाद जैसे ही हमारे बच्चे जो फर्स्ट मेरिट फर्स्ट और सेकंड आए हैं, उन बच्चों को हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से सम्मानित किया, सभी को,
1: सभी सभी बच्चे बच्चों
3: और बच्ची
1: को
3: हमारी,
1: हाँ, जी बच्चे और बच्चियों को, सभी को,
3: सबको सम्मानित किया ताकि वो पढ़े, ताकि और बच्चों को भी लगे कि हम अगर हम पढ़ेंगे तो हमें भी पंचायत द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो हमने एक नई मुहिम चलाई है गाँव में, जितने भी बच्चे थे सब बच्चों को हमने अच्छे से सम्मानित किया ताकि बच्चों को ये लगे कि हम भी पढ़ेंगे आगे से और हमें भी पंचायत द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
1: और महिलाओं के लिए,
3: महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप चले हुए हैं जो मेरे गांव में
1: जी,
3: मैं उनको पूरी सपोर्ट करता हूँ। जैसे ही उनकी मीटिंग होती है उनको मीटिंग में खुद भी जाता हूँ मैं, उनकी उनको बोलता हूँ कि सरकार की तरफ से आपको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला गया है कि खुद की सहायता खुद कर सकते हो आप लोग अगर जागोगे तो। तो मेरे गांव में पहले एक भी ग्रुप नहीं था मेरे टाइम में, अब कल छठा ग्रुप पे भी ओपनिंग हो जाएगी, 6 ग्रुप बन जाएंगे जी, कल 5वें ग्रुप की आज होगी।
1: बहुत अच्छी बात है जी,
3: एक ग्रुप और कल। हाँ जी
1: जी ममता जी, आपके जी ममता जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, और अगर समय रहा तो पकौड़ी जरूर हमें भी खिलाइएगा। जी धन्यवाद। मैं कुलदीप जी आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जो समय आपने सरपंच के तौर पे अपने गांव में काम किया और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप सरपंच बने रहेंगे, आपके पास एक सुनहरा मौका है, वो है जिला अम्बाला और खास करके हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो हमारे जिले से ही है, तो किस तरीके से आप उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा लेके आप अपने गांव को अच्छा बना सकते हैं, इस सवाल का जवाब देंगे। पहले कॉल लेते हैं, हेलो कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं?
7: सर, सर मैं ममता बोल रही हूं।
1: जी जी
7: सर,
1: जी
7: बोल। पकोड़े खाने के लिए सर कोई रोक नहीं है।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: रोक की किसने बात करी है, न्योंदा दे मिला है।
7: आपका ही है सर।
0: चलिए मैं तो बहुत जल्दी दादरी की तरफ आने का जब कार्यक्रम बनाऊंगा तो ममता जी के गांव जरूर चलेंगे मैं और प्रीतम जी,
1: और मैं भी आऊंगा
0: चाय पीने, और उस दिन के उस दिन के पकोड़ों की बुकिंग आज ही कर ली जाए। अच्छा कुलदीप जी, जी जी आएंगे हम, जल्दी आएंगे ममता जी
1: जी।
0: अच्छा ममता जी, आपके गांव की कुछ और महिलाओं को बच्चों को भी रेडियो ग्रामोदय और रेडियो वितस्ता, रेडियो अरावली, ये जो हमारा साझा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे रेडियो हरियाणा नाम के इस साझा प्लेटफॉर्म से जोड़िए ना, आप जब वहां अपना रेडियो लोगों को सुनाएंगी तो इस पे जुड़ जाएंगे।
7: सर मेरा मकान यहाँ पे रोहतक चौक पे है, मेरे घर वाले सारे दूर दूर रहते हैं घर पुणे के, तो इसलिए मैं किसी किसको जोड़ सकती हूँ सर? यहाँ पे थाने के पास ही है मेरा, तो ये सोनिया मेमर हुए आई थी ना, इनके पास ही है मेरा मकान।
0: अब बस मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे थाने के पास हो चाहे थाने से दूर हो, अपनी सखी सहेली जेठानी दुरानी पड़ोसन अड़ोसन लड़न आली झगड़न आली मदद करने आली सबको जोड़ना चाहिए, एक निमंत्रण है आप सबको। कुछ कमेंट्स हैं भारत जी, मुझे लगता है कि ममता जी की फोन कॉल को हम जब विराम देंगे तो ये कमेंट्स पढ़ देंगे। आपके पास हैं क्या? मुझे पढ़ने पड़ेंगे।
1: मेरे पास कुछ कमेंट्स है। करमबीर सिंह लिखते हैं राम राम हरियाणा जी, और नवीन शर्मा लिखते हैं आप और आपकी टीम साधुवाद की पात्र है, और रणदीप सिंह लिखते हैं यस्टरडे प्रोग्राम वाज अमेजिंग थैंक्स टू टीम HIRD। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप जी। और नवीन शर्मा जी लिख रहे हैं ग्रामीण विकास में इस तरह का ये अनूठा प्रयास हरियाणा में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लिखने के लिए, और आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर हमारे कमेंट्स में लिखे हुए हैं। जी सरपंच जी, आपसे जो मैंने प्रश्न किया था तो उसका आपने कितना सदउपयोग किया है और कितना आगे करने वाले हैं, ताकि आपको कल को ये ना रहे कि मेरे हाथ में सब कुछ था और मैंने कुछ कम किया या कम ही करता रहा। जी
6: सर, एक बार क्वेश्चन दोबारा से करेंगे।
1: मैंने आपसे ये पूछा, आप अंबाला से हैं और इस समय जो हमारे मुख्यमंत्री है वो हमारे एरिया से ही है, तो आपको उनसे जितना फायदा लेना आप चाहेंगे और आप अपने गांव में कितनी उन्नति करना चाहेंगे, कितनी कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में भी जो गांव वाले हैं वो आपको ही चुने, इस मौके को हाथ से ना जाने दें, ये आपसे जानना चाह रहा हूं। जी
6: देखो जी, मुख्यमंत्री जी ने तो पूरे हरियाणा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रखी कहीं से भी।
1: जी
6: उन्होंने तो हरियाणा क्या, आप तो मतलब भारत में ही कह दो मुख्यमंत्री जी को माना जाता है
1: जी।
6: तो मैंने जितनी डिमांडे माननीय मुख्यमंत्री जी को रखी, मैंने विकेसी की रखी थी वो हमारी पूरी हुई, अपने शमशान घाट की बाउंड्री वाल की रखी वो हमारी पूरी हुई, जो भी हमने स्कूल की रखी थी वो हमारी पूरी हुई। आगे भी जैसे हम कोई भी डिमांड रखते हैं उनकी तरफ से हमारे को कोई मतलब ऐसा नहीं है। वैसे जो भी
0: सवाल तो कुछ और था सरपंच साहब, सवाल तो ये था कि भाई आपको क्या लग रहा है क्या कि जो आपको ताकत मिली थी आपने उसका भरपूर प्रयोग कर लिया?
1: ये सवाल था जी।
6: बिल्कुल क्या सर, हमने तो विकास कार्यों की कमी नहीं छोड़ रखी सर गांव में।
0: अच्छा, और अभी अगर ये कहना हो कि विकास कार्यों की कमी नहीं छोड़ दी, मुख्यमंत्री भी मारे ऊपर मेहरबान, उनका क्षेत्र है, लेकिन गांव में ये तो और रह गया यार, ये होना हो जाना चाहिए, वो क्या है?
6: नहीं ऐसा तो खैर चलो, काम तो तकरीबन हमने गांव के तो सारे करी, पौंड की बताई जी आपको बता दिया, सीसीटीवी कैमरे, लाइटिंग प्रॉपर हमारे गांव में हो रखी है, गलियों नालियों का तो सारा तकरीबन सब हर काम हो रखा है। हमने तो डिमांड है हमारी दी हुई कि एक स्टेडियम की जो डिमांड है हमारी वो भी पूरी करेंगे, ये हमारी उम्मीद है उनसे भी हमारी वो पूरी करेंगे जो हमने उनको डाली हुई है। एक दो रास्ता है हमारा जो चौड़ा है, मतलब 6 कर्म का PWD के माध्यम से, जो हमारे गांव वालों को जिसकी जरूरत है वो पंचायत लेवल पे नहीं हो सकता, वो हमने उनसे उम्मीद रखी है वो भी हमारा करेंगे।
0: रणदीप सिंह जी हर दिन हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं और बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स ऑफलाइन, ऑनलाइन, फोन पर हमको देते हैं। भारत जी आपके सामने कमेंट उनका आ गया क्या? क्या आप इसको स्क्रीन पे देख के पढ़ेंगे?
1: स्क्रीन पे देखता हूँ। सिंस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज गिविंग सोलर इलेक्ट्रिक सब्सिडी, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय सरपंच टू प्रमोट इट, और कैन द सेम बी इंस्टॉल्ड इन स्कूल, लाइब्रेरी और पंचायत ऑफिस? सरपंच जी ये पूछ रहे हैं आपसे कि जैसे हरियाणा सरकार और भारत सरकार सोलर एनर्जी पर सब्सिडी दे रही हैं, तो क्या आप लोगों ने इस तरीके के प्रयास किए हैं? क्या स्कूल में या सरपंच का जो सचिवालय है क्या वहां पे इसको लगाया गया है? क्या इस तरीके का कैसे फायदा उठाया जा सकता है?
0: और इसमें मेरा मेरा मेरा पक्ष जोड़ लीजिए, वो ज्यादा बड़ा मुझे लगता है इससे भी महत्व का है कि PM सूर्य घर योजना जो है उसको आप अपने गांव के कितने घरों तक पहुंचा पाए हैं
1: जी?
0: कितनी छतें ऐसी हैं आपके गांव की जहां हमको जो सोलर सिस्टम है वो इंस्टॉल दिखाई देता है आज की तारीख, और कितने पाइपलाइन में होंगे? लोगों को जगा रहे हो क्या आप इस काम के लिए?
6: जी बिल्कुल सर, इसके लिए मीटिंग भी होती रहती है, ऑफिस में मीटिंग आती है, अपने बिजली डिपार्टमेंट से भी अधिकारी आते हैं, SDO साहब आते हैं, और मेरे गांव में लगभग 15-20 घरों में लग चुका है, सबसे पहले मैंने ही लगवाया था, और अभी कल अभी भी मतलब काम चला हुआ मेरे गांव में, एक दो छत पे लगा रहे हैं वो, इसका लगभग काम चला हुआ है तकरीबन, ऐसा है जी 1 साल के अंदर अंदर 50% से क्रॉस कर जाएंगे मेरे गांव में सोलर सूर्य घर योजना वाला जो स्कीम है ये कंप्लीट हो जाएगी तकरीबन।
1: जी जी रणदीप सिंह जी, रणदीप सिंह जी, ये आपके सवाल का जवाब सरपंच जी ने दिया और हम आशा करते हैं कि जो उन्होंने लक्ष्य बताया है उस लक्ष्य को ये पूरा करें, क्योंकि पीएम सूर्य घर योजना से हमें 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है जब हम उसको लगा देते हैं। जी जी
6: सर, ये जो जैसे बोल रहे थे ना कि पंचायत कार्यालय के ऊपर ये लगा या नहीं लगा, तो उसके लिए अभी सब्सिडी का प्रावधान ऐसा कुछ आया नहीं है, उसके लिए चर्चा कह रहे थे, तो मैंने बात की जैक्सन साहब से, वो कह रहे जैसे ही आएगा ना, इस पर अभी को लेटर हमारे पास आया नहीं।
1: अच्छा।
6: जैसे मैंने कनेक्शन बिजली के प्रोवाइड करवा दिया गाँव में दो बिल्डिंगों पे, जैसे ही आता है तो हम साथ के साथ उन पे भी लगवा देंगे।
1: जी जी जी जी,
6: पंचायत ऑफिस पे भी, अपना ग्राम सचिवालय है उस पे भी।
1: जी सरपंच जी, आपके पास जब ग्राम सभा होती है तो उसमें कितने लोग जुटते हैं और उसमें महिलाएं कितनी होती है, उनका कितना योगदान रहता है, क्या वो अपनी बात कह पाते हैं या केवल उनके जो जो उनके जो लोग होते हैं परिवार के सदस्य वो आते हैं, या महिलाएं खुद आती हैं या खुद वो कोई सुझाव देते हैं, उनका फैसला आप कहाँ तक मानते हैं और उनके जो योगदान है फैसले में वो कितना होता है?
6: जी सर, मोस्टली ऑलमोस्ट तो मतलब जेंट्स ही आते हैं जहाँ पर ग्राम सभा जब भी करते हैं हम, तो अगर लेडीज की बात करी जाए तो 10 से 15 लेडीज आती हैं, या फिर लेडीज हमारी सिर्फ जो अपने चल रहे हैं ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके इनको ही इकट्ठी करके, अगर इनसे कोई बात करनी होती है तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, किसी दिन इनकी कोई समस्या होती है पूछ लेते हैं इनको बुला करके, किसी भी तरह की कोई समस्या होती है इनको तब पूछ लेते हैं। लेकिन अगर ग्राम सभा की बात करी जाए तो जेंट्स ही आते हैं, गाँव का ग्रामीण क्षेत्र का ऐसा ही होता है, लेडीज मतलब घर वालों के सामने शर्म करती है, नहीं आती।
0: अभी यहाँ पे मुझे कुछ करना
1: जी, मैं मुझे भी एक बात कहनी सर, फिर आप कहिए। मैं ये कहता हूँ कि आज का जो हमारा देश है, आज का जो हमारा प्रदेश है, ऐसा अब कोई ऐसा मौका नहीं है कि जहाँ पर घर वालों के सामने शर्म आए और हम जो फैसला है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होगा। ये देखा गया है कि जहां पर गांव की सरकार हो या प्रदेश की हो या सेंटर की सरकार हो, जहां पर महिलाओं का योगदान ज्यादा है वही फैसले सही भी हुए हैं, सही अच्छे भी हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हरियाणा सरकार भी ये कहती है कि अगर महिला सरपंच है या महिला कोई पंच है उनको खुद आना चाहिए, ना कि उनके रिप्रेजेंटेटिव को आना चाहिए। जी वीरेंद्र सर,
6: पंचायत में जो महिला पंच और सरपंच मतलब जो जेंट्स है मतलब अपने पंचायत में है वो तो आते हैं सारे
1: जी,
6: वो चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है वो तो पूरे आते हैं कम्प्लीट।
0: देखिए मैं इसमें बस इतना सा जोड़ूंगा कि अब ये शर्म संकोच
6: जी,
0: घूंघट
6: जी,
0: परहेज ये समाप्त जी होना चाहिए, और ये तब होगा सरपंच साहब जब आप लीड करोगे। ग्राम सभा में अंतिम लक्ष्य तो ये है कि ग्राम सभा में अगर 50 पुरुष आए हैं तो 48-50 महिलाएं भी आनी चाहिए, भले ही वो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाएं हों, भले ही वो स्कूल की शिक्षक हों जो गांव में रहती हैं, गांव की ही हैं, भले गांव की बेटियां हों, भले गांव की बहुएं हों, पंच तो आएंगी ही आएंगी, आना ही चाहिए उनको, आधी है वो तो 50% है ही। गांव में सरकार का जो विजन है मैं उसका जिक्र केवल करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। एक, सरकार ये चाहती है कि गांवों में सभी महत्वपूर्ण निर्णय विकास कार्यों से संबंधित, गांव के मसलों से संबंधित, उनको लेने वाली संस्था वो ग्राम सभा बने। गांव में जो कुछ अच्छा होना है, गांव में किसको क्या लाभ दिया जाना है, कौन सी गली बननी है, कौन सी पहले बननी है, कौन सी बाद में बननी है, कौन से तालाब की खुदाई करके हम उसको अमृत सरोवर बनाएं, कौन से को न बनाएं, इन सब निर्णयों की आखिरी जो निर्णायक संस्था है वो हमारी ग्राम सभा होनी चाहिए, पहली बात। तो ग्राम सभा को गांव से जुड़े निर्णयों की स्थली बनाइए और फिर ग्राम सभा को रिप्रेजेंटेटिव ग्राम सभा बनाइए। ग्राम सभा अर्थात पुरुषों की सभा नहीं, ग्राम सभा उसमें 50% जो आपके मतदाता हैं अर्थात महिलाएं हैं, लगभग लगभग 50% होंगी, उनकी
3: बिल्कुल
0: उपस्थिति लगातार बढ़नी चाहिए। जो ग्राम सभा अपने गांव के सारे निर्णय लेती दिखाई देगी, वही ग्राम सभा
3: जी
0: सचमुच ग्राम सभा कहलाने की हकदार है। जिस
3: जी
0: ग्राम सभा में सब तबकों के लोग आएंगे, महिला और पुरुष
3: जी
0: बराबर बराबर आएंगे, गरीब तबके के लोग भी आएंगे, अपने आप को जो आर्थिक रूप से संपन्न मानते हैं वो भी आएंगे, जिसमें युवा भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, सब आयु वर्ग के लोग आएंगे, वही ग्राम सभा वास्तविक ग्राम सभा, प्रभावी ग्राम
1: सक्सेसफुल
0: सभा होगी। अब हकीकत और किताब में एक अंतर है भारत की। अभी
1: जी
0: जैसी ग्राम सभा होनी चाहिए कानून के हिसाब से, जैसी ग्राम सभा की संकल्पना हमारा केंद्र, हमारी केंद्र की सरकार करती है, मोदी जी की सरकार करती है, जैसी ग्राम सभा की संकल्पना हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, या हमारे पंचायती राज के मंत्री हैं कृष्णलाल पंवार जी, जैसी ग्राम सभा होने की कल्पना वो करते हैं, अभी उसमें और धरातल की स्थिति में बहुत अंतर है।
1: अंतर है जी,
0: कारण
3: बहुत
0: वही है,
3: अंतर
0: लोगों के परहेज है, वर्जनाएं हैं, फिर रुचि नहीं ले रहे अभी हरियाणा के लोग ग्राम सभा में।
3: जी
0: लाख प्रयास करने पर भी उतनी संख्या में लोग अपने ही फैसले लेने के लिए ग्राम सभा में नहीं आते।
3: नहीं आते सर,
0: ये हमारे सामने चुनौती है।
1: मुझे लग रहा
0: इस
1: सर
0: संकट से
3: जी,
0: हमको गांव को निकालना है। जी
1: मुझे
0: भारत जी कुछ
1: मुझे
0: कहना।
1: लग रहा है कि इसमें सरपंच जी का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि जैसे ये अनुरोध करेंगे इनको जाना पड़ेगा, लोगों को लेके आना पड़ेगा। एक बार जब लोग आएंगे, अभी जैसे हमारी नई योजना वीवी राम जी शुरू हुई है, जब सरपंच जी उन सभी को बताएंगे कि हम अगले साल में अपने गांव में क्या करना चाहते हैं, हमारे पास अगर योजना हम बनाएंगे उस योजना को हम पूर्ण कर सकें। हो सकता है कि आज तक कोई ऐसा काम हुआ ही ना हो जिस पर नजर ही ना पड़ी हो, और अगर गांव वाले सभी आए उस सभा में वो अपनी बात को रखें, तो वीवी राम जी के लिए भी अगले साल के लिए, पूरे एक साल के लिए एक योजना बनाई जा सकती है, जिसके अंतर्गत पहले 100 दिन का कार्य मिलता था, अब 125 दिन का कार्य मिलता है। बाकी जानकारी सर आप दे, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल जाऊं। तो वीरेंद्र सर प्लीज।
0: बिल्कुल नहीं, आपने आपने सही और सटीक कहा। दो काम ग्राम सभा के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक, गांव की संसद कहलाने वाली ग्राम सभा को हर साल अपने गांव की विकास योजना बनानी होती है, ये कानूनी प्रावधान है। ग्राम पंचायत विकास योजना वो साल में एक बार पूरे साल की बननी चाहिए। अब जब से वीबीजी रामजी नाम की नई योजना आई है रोजगार की मनरेगा के स्थान पर, तो उसमें सरकार ने एक नई बात जोड़ी है कि भाई रोजगार की योजना भी ऐसे नहीं है कि जुक्कर जी में आया काम दे दिया, कुछ भी शुरू कर दिया, कुछ भी छोड़ दिया। नहीं साहब, सरकार की अपेक्षा ये है, नए कानून में उम्मीद ये की जाती है आपसे गांव में, कि ग्राम सभा में ग्राम पंचायत योजना बनाएगी और ग्राम सभा उसको पारित करेगी। साल भर में 4 श्रेणियों के जो काम गांव में होने हैं विकसित भारत जी राम जी के तहत, उन कामों की भी विधिवत व्यवस्थित रूपरेखा बनेगी। भाई साहब, पहले इस साल बीबीजी राम जी में हम ये काम करवाएंगे, ये तालाब पक्का कराएंगे, ये भवन बनेगा, ये जल की अवसंरचना बनेगी, ये सारी चीजें पहले तय हो जाएंगी और विकसित ग्राम योजना ये भी आपको बनानी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जीपीडीपी, जिसको हम पहले कहते थे ग्राम पंचायत विकास योजना, और वीबीजी राम जी के तहत बनने वाली साल भर की विकसित ग्राम योजना, ये दोनों आपको बनानी पड़ेंगी। और ये दोनों बहुत अलग नहीं हो सकती, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी।
3: जुड़ेंगे जी,
0: ग्राम
3: जी, जी
0: पंचायत विकास योजना एक उसका दायरा बड़ा है, और
3: जी
0: विकसित ग्राम योजना जो वीबीजी राम जी में बनेगी उसमें आपको रोजगार से संबंधित योजना बनानी है और उसमें गांव का विकास कराना है। वीबीजी राम जी अर्थात केवल और केवल काम देना नहीं, वीबीजी राम जी अर्थात जुकर क्यूकर काम देना नहीं, काम देंगे, ज्यादा काम देंगे, लेकिन गांव का विकास कराएंगे उस बहाने से। कॉलर हैं कोई लाइन पर, उनको जोड़ लें। भारत जी पहले हेलो
1: जी।
7: हेलो
1: हाँ जी
0: जी जी
7: जी, मैं सरपंच जी की बात से सहमत नहीं हूँ। जब घर की महिलाओं के नाम राशन कार्ड चलता है तो सरपंच साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि महिला ही नहीं आती, श्रम संकोच करती है। ये आदमी के ऊपर ही निर्भर होता है।
6: बिल्कुल सही बात है सरपंच साहब आपकी।
7: कहना रही आदमी दबा के रखेंगे तो महिलाओं को तो अपनी आवाज उठानी पड़ेगी
0: और उठानी चाहिए।
6: बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे गांव में तो मेरे प्लान से पहले कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप भी नहीं था। मैंने आज 6 ग्रुपों पे खड़ा कर दिया अपना गांव ला करके, उनको इतना अवेयर किया। मैं तो आगे भी कर रहा हूँ, उससे पहले कोई पूछता ही था लेडीज को। वो लेडीज आप जो राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ सरकार से सुविधाएं लेने के लिए उनका नाम आगे में रखा हुआ था। बाकी उनको किसी चीज के लिए नहीं बोला था कि आप आगे निकलो, आप भी आपको भी हक है अपना अधिकार मांगने का।
7: ये मेरे ससुर जी से पहले घूंघट करती थी मैं, ये मेरे जेठ जी लेक्चरर है, ये कभी भी घूंघट नहीं करवा करने देते। शादी में जाते हैं सबसे अलग अलग से आशीर्वाद दुआ के फोटो खींचते है, कहेंगे बेटा ने फोटो खिंचवाया। अपनी बेटी के बराबर मानते है मुझे अभी।
0: हाँ, ये बदलाव ममता जी आ रहा है हरियाणा में, और कहीं ये कम है कहीं ज्यादा है। भारत सरकार का
7: और मोदी सरकार ने भी सर ने भी ये मुहिम चला दी कि महिलाओं के नाम राशन कार्ड कर दिया, तो ये महिलाओं की चलती है, आदमियों की नहीं चलती है। ये महिलाएं जितनी दबेंगी ना उतने ही उनके लिए वो है।
0: ये भारत जी पे संकट आ गया, एक कुलदीप सैनी जी की चलनी बंद होगी, वीरेंद्र सिंह चौहान तो वैसे ही मारा जाएगा। देखिए, खूब चलनी चाहिए महिलाओं की, और चल रही है, और सरकार कह रही है चलनी इनकी चाहिए। केवल राशन कार्ड नहीं ममता जी, भारत सरकार ने तो ये कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान मिलेगा उसकी मालकिन कागजों में महिला होगी। आप गाँव में जमीन खरीदेंगे तो अगर महिला के नाम पर आप जमीन खरीदेंगे तो कोई पति अपनी पत्नी के नाम पर भूमि खरीदेगा तो उसपे स्टैंप ड्यूटी में
1: कम लगेगी,
0: छूट मिलेगी। और उधर ना रणदीप जी गुरुग्राम में जो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं वो ममता जी की टिप्पणी से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं वाह ममता जी बहुत बढ़िया, गजब डा दिए ममता जी, नहीं फोन करा करो और अपनी बात कहा करो। विक्रांत सिंह वो राम राम हरियाणा कह रहे हैं जी।
7: सर मैं एक आपसे बात कहना चाहती हूँ, मैंने सिलेंडर के लिए आवाज उठाई थी ना
1: जी जी,
7: तो अपना रेडियो आर सी मोनिका मैडम थी, वो न बोली मेरी शेरनी तू आवाज उठा रही है, देखते हैं स्त्री कितनी पार जाती है। तो जिस दिन मेरा सिलेंडर आया उस दिन मैंने उनसे फोन किया कि जी सिलेंडर आ गया, तो बोली शेरनी की सिलेंडर लेकर।
0: देखिए जब जब जब कोई बुलंदी से आवाज उठाएगा तो आवाज तो सुनी जाएगी, और ये हो सकता है कभी कुछ देर लग जाए। ममता जी ऐसे ही बुलंदी के साथ हमारे साथ और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। भारत जी स्टूडियो की घड़ी में 17:00 हो गए हैं। मैं समझता हूँ आज के राम राम हरियाणा के अंक को यहाँ विराम देने का समय है। विराम आप अपने अंदाज में दीजिए, मेरी ओर से सबको राम राम
1: जी। प्रीतम जी धन्यवाद करता हूँ जो हमें कॉल करते हैं इस कार्यक्रम में, खास करके ममता जी हमेशा जब कॉल करती हैं, अब हमें उनसे नाम नहीं पूछना मतलब जरूरत पड़ती है क्योंकि उनकी आवाज ही उनकी अब पहचान हो गई है। मैं एक बात सिर्फ सरपंच जी को कहना चाहूंगा कि सरपंच जी आपको ये बीड़ा उठाना होगा कि आपको घर घर जाना होगा, आपको उनके परिवारजनों को समझाना होगा कि अब समय आ गया है कि जब सबका योगदान खास करके महिलाओं का योगदान जरूरी है, जब सबका फैसला होगा तो गांव की उन्नति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से इजाजत लेता हूं, आज्ञा लेता हूं, और कल हम जरूर मिलेंगे आपसे 4 बजे शाम को राम राम हरियाणा में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है,

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your reacts.

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सब

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 11। आज का कार्यक्रम आधारित है बॉलीवुड की मशहूर गायिका गीता दत्त पर, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। जब कोई आवाज दिल की तार छू जाए, एक ऐसी ही आवाज थी गीता दत्त, नाजुक सी लेकिन अंदर से एक तूफान, रोम रोम में मस्ती लेकिन आंखों में कहीं उदासी। वो सिर्फ गाती नहीं थी, जज्बात को आवाज देती थी, छेड़ती थी तो चीख भी खुश हो जाए और गुनगुनाती तो दर्द भी मुस्कुराए। चाहे वो तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे हो या वक्त ने किया क्या हसीन सितम, गीता जी के सुरों ने हर जज्बे को छूना था। आइए उन्हीं सुरों के सफर पर, जहां एक आवाज थी जो खुद एक दास्तान थी। ये है गीता दत्त के गीतों का जादू, एक सुनहरे पल।

0: वक्त ने किया।
1: गीता घोष राय चौधरी 10 बच्चों में से एक थी। उनका जन्म इदलपुर नामक गांव में एक अमीर जमींदार परिवार में हुआ था, जो अब बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में आता है। अपने जमाने की मशहूर गायिका गीता दत्त का जन्म 23 नवंबर 1930 को फरीदपुर में हुआ। बेहद खूबसूरत और सुरीली आवाज की धनी गीता दत्त फरीदपुर के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। गायिका का पूरा परिवार 40 के दशक में कोलकाता आ गया और फिर वो सब मुंबई चले गए। गीता दत्त का संगीत में रिश्ता बचपन में ही जुड़ गया था। उनकी माँ अमय देवी एक कवयित्री थी और उनके पिता मुकुल राय संगीतकार थे। इसी वजह से संगीत के साथ उनका परिचय काफी कम उम्र में हो गया था।

बचपन के दिनों से ही गीता दत्त का रुझान संगीत की ओर था और वो पार्श्व गायिका बनना चाहती थी। गीता दत्त ने अपनी संगीत की प्रारंभिक शिक्षा हनुमान प्रसाद से हासिल की। गीता दत्त को सबसे पहले वर्ष 1946 में फिल्म बक प्रहलाद के लिए गाने का मौका मिला। गीता दत्त ने कश्मीर की कली, रसीली, सर्कस किंग जैसी कुछ फिल्मों के लिए भी गीत गाए, लेकिन इनमें से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। इस बीच उनकी मुलाकात महान संगीतकार एसडी बर्मन से हुई। गीता राय में एसडी बर्मन को फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने गीता दत्त से अपनी अगली फिल्म दो बाई के लिए गाने की पेशकश की।

0: धीरे चलना।
1: वर्ष 1947 में प्रदर्शित फिल्म दो भाई गीता दत्त के सिनी कैरियर की अहम फिल्म साबित हुई और इस फिल्म में उनका गाया ये गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। फिल्म दो भाई में अपने गाए इस गीत की कामयाबी के बाद बतौर पार्श्व गायिका गीता दत्त अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई।

वर्ष 1951 गीता दत्त के सिनी करियर के साथ ही व्यक्तिगत जीवन में भी एक नया मोड़ लेकर आया। फिल्मबाजी के निर्माण के दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक गुरुदत्त से हुई। फिल्म के एक गाने तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले की रिकॉर्डिंग के दौरान गीता दत्त को देख गुरुदत्त मोहित हो गए। इसके बाद गीता दत्त भी गुरुदत्त से प्यार करने लगी। वर्ष 1953 में गीता दत्त ने गुरुदत्त से शादी कर ली। इसके साथ ही फिल्मबाजी की सफलता ने गीता दत्त की तकदीर बना दी और बतौर पार्श्व गायिका वो फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई।

0: गाने।
1: दिलों की गहराई तक उतर जाने वाली आवाज और गाने की दिलकश अंदाज के मिलकर गीता दत्त भारतीय फिल्म संगीत में पश्चिमी प्रभाव की पहचान थी और वो ऐसी फनकार थी जिन्होंने हर तरह के गीत गाने में महारत हासिल थी। गीता दत्त की जादुई आवाज सबसे पहले जोगन में सुनने को मिली। इस फिल्म में उन्होंने मीरा के आत्रनाद को उड़ेल कर श्रोताओं को विरही बना दिया है। वह खुलकर गाती है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, घूंघट के पट खोल रे तो हे प्रिया मिलेंगे। और गीता के प्रिया उससे 9 साल पहले चले गए। वह गाती रही, जोगी मत जा मत जा। गीता दत्त ने गुरुदत्त की फिल्मों में क्या खूब गाया है, गले से नहीं एकदम दिल से, उनके मन की बेचैनी तथा छटपटाहट एक एक शब्द से रिश्ती मिलती है। फिल्म चाहे बाजी हो या आरपा, सीआईडी हो या प्यासा, कागज के फूल हो या चौधरी का चांद, उनके स्वर की विविधता का कायल हो जाता है श्रोता। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभल के, हाँ बड़े धोखे हैं इस प्यार में, सचमुच उन्हें प्यार में धोखा खाया, फिर भी गाती रही, ये लो मैं हारी पिया, कोई तेरी जीत।

साहेब बीबी और गुलाम फिल्म भले ही छोटी बहू यानी कि मीना कुमारी की फिल्म रही हो, लेकिन छोटी बहू का दर्द, शिकायत, अकेलेपन की पीड़ा, पति की बेवफाई को गीता की आवाज ने पर्दे पर ऐसा उतारा कि मीना अमर हो गई। न जाओ वो सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। और मीना के साथ सिनेमा घर के अंधेरे में डूबे हजारों दर्शक रोए। गीता दत्त ने हर तरह के गाने गाए हैं। फिल्मबाजी के गीत जरा सामने आओ, जरा आंख मिला मैं श्रोताओं को उन्मादी स्वर मिलते हैं। बाई बाई का गीत ऐ दिल मुझे बता दे तू सुनकर मन प्रेम की सफलता से भर जाता है। प्यासा की गुलाबों का जीवन संगीत सुनकर मन अमृत प्यास में खो जाता है। आज सजन मोहे अंग लगा ले जन्म सफल हो जाए, लेकिन गीता ने जिंदगी भर जिंदगी का जहर पिया। कैसे कोई जी जहर है जिंदगी, वह शराब का जहर रोजाना गले के नीचे उतारती रही और एक दिन सबको अकेले छोड़कर चली गई।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। गीता दत्त और गुरु दत्त का प्यार परवान चढ़ने लगा। गीता और गुरु दत्त ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन गीता के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। बावजूद इसके दोनों ने परिवार के विरोध को दरकिनार करते हुए 26 मई 1953 को साधारण तरीके से शादी कर ली। शादी के बाद गीता दत्त के 3 बच्चे तरुण दत्त, अरुण दत्त और नीना दत्त हुए। गुरु दत्त और गीता दत्त की शादी में सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक अफवाहों ने इनके हंसते खेलते परिवार में ग्रहण लगा दिया। इस खूबसूरत प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद गुरु दत्त ने गीता दत्त पर बंदिशें लगा दी कि वह सिर्फ उन्हीं की फिल्मों में गाएगी।

काम में प्रीति समर्पित गीता दत्त तो पहले इस बात के लिए राजी नहीं हुई, लेकिन बाद में गीता दत्त ने किस्मत से समझौता करना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे अन्य निर्माता निर्देशकों ने गीता दत्त से किनारा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद गीता दत्त अपने पति गुरुदत्त के बढ़ते दखल को बर्दाश्त न कर सकी और उसने गुरुदत्त से अलग रहने का निर्णय कर लिया। इस बात की एक मुख्य वजह ये भी रही कि उस समय गुरुदत्त का नाम अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ भी जोड़ा जा रहा था, जिसे गीता दत्त सहन नहीं कर सकी। गीता दत्त से जुदाई के बाद गुरुदत्त टूट से गए और उन्होंने अपने आप को शराब के नशे में डुबो दिया।

हिंदी के अलावा गीता दत्त ने कई बंगला फिल्मों के लिए भी गाने गाए, इनमें तुम्ही जो आमार, निशी रात, बाका चांद, दूरे तुम्हें आज जैसे गीत श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय है।

10 अक्टूबर 1964 को अत्यधिक मात्रा में नींद की गोलियां लेने के कारण गुरुदत्त इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गुरुदत्त की मौत के बाद गीता दत्त को गहरा सदमा पहुंचा और उसने भी अपने आप को नशे में डुबो दिया। 70 के दशक में गीता दत्त की तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने एक बार फिर से गीत गाना कम कर दिया। लगभग 3 दशक तक अपनी आवाज से श्रोताओं को मदहोश करने वाली पार्श्व गायिका गीता दत्त ने अंत 20 जुलाई 1972 को इस दुनिया से विदाई ली।

0: तो दोस्तों, आज के सुनहरे पल का सफर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन गीत अभी जिंदा है और गीता जी की वो आवाज अब भी कहीं दिल के कोने में गूंज रही है। वो सिर्फ गाने वाली नहीं थी, वो एहसास थी, जज्बात थी और हर उस दिल की धड़कन थी जो प्यार करना जानता है, ये इंतजार में जीता है। आज का ये सुनहरे पल यादों के नाम जो ना कभी पुरानी होती है ना कभी बुलाई जा सकती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 11। आज का कार्यक्रम आधारित था बॉलीवुड की मशहूर गायिका गीता दत्त पर, रिकॉर्ड किया भरत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के

0: है करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का डार है।

0: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: दोस्तों, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते।

और सेहराओं में खिली लुक्का छुपी, फिर पिघलते रहे भरी दोपहर की तपिश में। मैं जानता हूं तुमको दर्द झेलने की आदत है, मैं जानता हूं तुमको दर्द झेलने की आदत है, और मैं चुपचाप सहता हूं। हे हमें रात की ठंडक का इंतजार, क्योंकि यहां तुम्हें मुझे इन गुप्त अंधेरों में शीतलता का एहसास जो है। आओ यहां इन सहराओं में खेले लुक्का छुपी, फिर से बीते दिनों की यादों को

मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना हमें भी सिखा दीजिए। अभी तो बहार की शुरुआत है, पर मौसम बदलने में देर कहाँ लगती है। ये भी शिकवा नहीं कि सब कुछ क्यों सहता रहा। बात इतनी सी है कि मैं क्यों खामोश रहा।

जब जब तेरा जिक्र होता है महकता हूँ बहकता हूँ भटकता हूँ रूह में उतर जाती हो ख्वाबों की ताबीर बन जाती हो इन हवाओं में मुस्कुराती हो इन फिजाओं में गुनगुनाती हो जब जब भी तेरा जिक्र होता है

फासलों के दरमियां अब सिर्फ तुम्हारी परछाई है, जिसे मैं हर पल महसूस करता हूं, बिठाता हूं अपने पास, संवारता हूं, सजाता हूं, बातें करता हूं। गर्ज इश्क था तुम्हारा वजूद, पर फिर भी तुम हमारे न हो सके, और तमाम सफर परछाइयों के साथ ही गुजर गया। ये जमीन चुप, आसमां चुप, मैं

मिसकर। यहां हर तरफ गूंजती है सदाएं इश्क की, और तुम्हारी आंखों में झील जैसी खामोशी और बदलते मौसम की झलक दिखाई देती है। यहां हमारे संग संग बादल तैरते हैं और इन नीले आसमानों में हम खोजते हैं अपनी अपनी वीरान बस्तियां। आक्रोश भी है कि ये बदलते मौसम हमारे कभी क्यों नहीं हुए।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं, अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं। हम प्रसारण करते हैं अम्बाला छावनी से, और ये सामुदायिक रेडियो स्वीकृत हुआ है अम्बाला के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:20। हम आप सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप हमारे कार्यक्रमों के साथ पूरा दिन रहते हैं और अपने फीडबैक से हमें जानकारी आप हमें देते हैं, और फीडबैक से हमें हमारे काम के प्रति और जिम्मेदारी बनती है, और हम इससे ऊर्जावान होते हैं। श्रोताओ, एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका अपना चाहता स्टेशन रेडियो विदस्ता। वक्त का पहिया घूमता रहता है, और अब समय हो चला है हमारे आज के खूबसूरत सफर को यहीं थामने का, यानी आज के प्रसारण के समापन का। पर आप सभी के साथ मैं हर दिन किसी खास विषय पर बात करता हूं और देता हूं आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण, और साथ में कुछ पंक्तियां आप सभी के लिए लाता हूं। आज दिन भर हमने सुरों की महफिल सजाई, यादों के दिए जलाए, और आपके साथ दिल की ढेरों बातें की। इसी संदर्भ में आज का हमारा विषय है आचरण, यानी करेक्टर या कंडक्ट। जाते जाते आइए इस विषय पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं, ताकि आज की रात हम एक गहरे और सकारात्मक विचार के साथ सो सकें। आचरण इंसान का आईना। श्रोताओं, एक इंसान का आचरण रातों रात नहीं बनता। यह उसकी सोच, उसके संस्कारों, उसकी संगति और उसके दैनिक अनुभवों की ईंटों से मिलकर खड़ी हुई एक इमारत है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम व्यवहार करते हैं, और जैसा हम लगातार व्यवहार करते हैं वही एक दिन हमारा आचरण बनता है। आचरण इंसान की वह खामोश पहचान है जो उसके बिना बोले ही उसका पूरे परिचय दुनिया के सामने रख देती है। आचरण का निर्माण बचपन से ही होता है। अब सवाल उठता है कि इस आचरण के निर्माण की नींव कहां रखी जाती है। बेशक हमारे घर में। बचपन वो गीली मिट्टी है जिसे जैसा चाहें वैसा आकार दिया जा सकता है। यहां माता पिता की भूमिका सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला बिंदु, संस्कारों की पहली पाठशाला। बच्चे वो नहीं सीखते जो उन्हें कहा जाता है, बच्चे वो सीखते हैं जो वो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। दूसरा, नैतिकता का पाठ। बचपन से ही बच्चे में ईमानदारी, बड़ों का सम्मान, जीवों के प्रति दया और सच बोलने की आदत डालना माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

में या विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन जो जुनून और जो सुकून, जो इज्जत और जो आत्मबल एक अच्छे आचरण वाले इंसान के पास होता है, वो किसी चालक इंसान, वो किसी चालाक इंसान के पास कभी नहीं हो सकता। समय बदलता है और आचरण की खुशबू हमेशा टिकी रहती है। श्रोताओं, आप घड़ी की सुइयां गवाही दे रही है कि मुझे आपसे विदा लेना होगा। आज के इस बेहतरीन सफर को विराम देने का वक्त आ गया है, पर उससे पहले आप सभी के लिए कुछ पंक्तियां आप सभी की नजर। आज की पंक्तियां यूं है, दिलों में प्यार लबों पर दुआओं का वास्ता रहे, दिलों में प्यार लबों पर दुआओं का वास्ता रहे, सच्चे आचरण से महकता हर एक रास्ता रहे। लहरों की तरह हर दिल में उमंगे जगाता रहे, लहरों की तरह हर दिल में उमंगे जगाता रहे, सदा गूंजती रहे यह आवाज और जिंदा वितस्ता रहे, सदा गूंजती रही है आवाज और वितस्ता जिंदा रहे। जी हां दोस्तों, ये था आज का विषय और आज की पंक्तियां। ये आज की जानकारी आप तक पहुंचाई गई टीम रेडियो वितस्ता की ओर से। जाने से पहले आपको विवरण देता हूं कल के कार्यक्रमों का। कल 9 जुलाई 2026 थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर। वंदे मातरम से हम शुरुआत करते हैं, लाते हैं आपके लिए एक सुविचार। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत और 7:05 पर होगा कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 10। रविंद्र जैन पर तैयार किया गया कार्यक्रम पेश करेंगे आरजे किरणी। 8:30 बजे सकारात्मक कहानियों का सिलसिला जारी है और एपिसोड 29 आप सुन पाएंगे आरजे शिवानी के जुबानी। जीवन में कभी हार ना माने, ये था, ये रहेगा विवरण कल की इस कहानी का। 9:30 बजे होगा कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 13 जिंदगी के हसीन लम्हे। 10:05 पर नारी एक दर्पण एपिसोड 3 होगा, पेश करेंगे आरजे सेजल। संगीत की सभा जारी रहेगी। 2 बजे बृहस्पतिवार को आप सुनते हैं साइबर अपराध के बारे में हमारा तैयार किया गया एपिसोड। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम गजल और 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 1 किशोर कुमार पर तैयार किया गया, पेश करेंगे आरजे किरणी। और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है बीगा है तुम्हारा आंचल। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करेंगे और अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब रेडियो वितस्ता एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ के आप आज के प्रसारण को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने रेडियो और होस्ट भारत सोपोरी को। कल सुबह फिर होगी मुलाकात नई ऊर्जा, नए गानों और नई बातों के साथ। तब तक आपसे आप अपना ख्याल रखें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें, बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दें, बड़े बुजुर्गों का आदर और सत्कार करें। तो कल तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।